एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 25वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 15 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 8:56 होने वाले हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 8:59 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का शुभ विचार। यदि आप 100 लोगों की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम एक की मदद जरूर करें। मदर टेरेसा। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर, पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी पहुंचेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाओं के साथ आंधी बारिश का दौर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री श्री मोदी आज अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हो रही है। भारत का यूएई को निर्यात 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। इसके साथ ही यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस साल भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देश सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक की। श्री प्रधान के आवास पर हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, विद्यालय शिक्षा सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक, सीबीएसई के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं कक्षा की दूसरी बार की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 21 मई तक ये प्रदेश के 90 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी। इसके लिए राज्य के करीब 1300 स्कूलों में 21,000 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय उड़न दस्तों का गठन किया गया है। वहीं आरबीएसई की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं भी कल से शुरू हो गई। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित अन्य शहरों में भी ईंधन के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 3.25 रुपए और डीजल करीब 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्र प्रथम के संकल्प को आत्मसात करते हुए प्रदेश में ईंधन की बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की कवायद शुरू की गई है।

0: दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्र प्रथम के संकल्प को आत्मसात करते हुए प्रदेश में ईंधन की बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की कवायद शुरू की गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिलों में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय किया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने एस्कॉर्ट सुरक्षा छोड़कर ईंधन बचाने का संदेश दिया। श्री चौधरी ने कहा कि ईंधन की बचत आज के समय की जरूरत है, हर देशवासी को इसमें अपनी भागीदारी देनी चाहिए।
1: ईंधन को बचाना है, ये हर भारतीय को ये सोचना होगा। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं राष्ट्र हित के लिए कहते हैं, आज मैंने तय किया है कि जो एस्कॉर्ट गाड़ी एक चलती है वो बंद, सिर्फ जो मेरी गाड़ी है ये गाड़ी जो मुझे मिली है उस गाड़ी का मैं उपयोग करूंगा और एस्कॉर्ट गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे ताकि ईंधन की बचत हो।
0: राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक सीजे संजीव प्रकाश शर्मा ने भी अपने वाहन के साथ चलने वाली एस्कॉर्ट कार को छोड़ दिया है। इसी तरह निचली अदालतों में कई मजिस्ट्रेट कार पुलिंग कर कोर्ट पहुंच रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई गंगा दशमी से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। प्रदेश भर में ये अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में कल इस बारे में अहम बैठक हुई। उन्होंने कहा कि अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए हर जिले में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण का काम मिशन मोड पर किया जाएगा। अभियान के दौरान श्रमदान, स्वच्छता गतिविधियां, पौधरोपण, जल स्रोतों की सफाई, प्रभात फेरियां और जागरूकता रैलियां आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के राज्य स्तरीय समापन समारोह के साथ ही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का राज्य स्तरीय शुभारंभ होगा। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को जल जीवन मिशन 2.0 के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और प्रसूताओं तथा उनके परिजनों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पिछले दिनों हुई प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने की घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली एम्स की टीम भी आज कोटा में इस प्रकरण की जांच करेगी। अंतिम रिपोर्ट मिलने पर ही घटना के सही कारणों तक पहुंचा जा सकेगा।
2: जो भी है, चाहे दवाइयों में है, चाहे साफ सफाई में, जो भी इसका तो कौन मालूम करेंगे, गंभीर विषय है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल है, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम उस पर करेंगे और जो भी दोषी है उसके अगेंस्ट केस लगाएगा। तो बैठ हुई उनके परिवार को मेरी तरफ से हार्टफेल्ट कंडोलेंस में देना चाहता हूँ कि ये बहुत दुखद घटनाएं हुई और हम सब इसमें हमारे खुद की आंखों में आंसू लगाए।
0: पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर बना हुआ है। इससे तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। हालांकि गर्मी का असर बरकरार है। कल हनुमानगढ़, फलौदी, बीकानेर, बारा और राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में हल्की बारिश हुई। जयपुर में भीषण गर्मी के बाद शाम को तेज रफ्तार हवाओं और गरज के साथ रुक रुक कर करीब 2-3 घंटे बरसात का दौर चला। कोटपुतली बहरोड में देर शाम चली धूल भरी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगह बिजली के खंभे और पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ। उधर पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी का प्रकोप है। प्रशासन की ओर से पानी की फुहारों से लोगों को गर्मी से राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। फलौदी, बाड़मेर और जैसलमेर में दिन का पारा 45 डिग्री से अधिक रहा। वहीं श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। चित्तौड़गढ़ और जालौर में रात का तापमान 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज शेखावाटी क्षेत्र,

0: बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं गरज के साथ बूंदाबांदी के आसार जताए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर, पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी पहुंचेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाओं के साथ आंधी बारिश का दौर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। अब से लेकर सवेरे 10 बजे तक श्रोता सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर
2: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

चित्रलो कार्यक्रम का अगला गाना कार्तिक कॉलिंग कार्तिक फिल्म से शंकर महादेवन, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेओ की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: कार्यक्रम का अगला गाना टू स्टेट्स फिल्म से, अरिजीत सिंह चिन्मय श्रीपदा की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।
1: इश्क की धूम

का अगला गाना हमारे सभी बड़े दिल वालों के लिए, 30 मार्क हाँ फिल्म से सुखविंदर सिंह की आवाज में और इनके साथ दिया है श्रेया घोषाल ने, अन्विता दत्त के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

इस हाई नोट पे समाप्त करते हैं आज का चित्रलोक कार्यक्रम। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत, लेकिन जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार, जो आधारित होगा माधुरी दीक्षित पर, तो सुनना ना भूलिए।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल है।

0: कुछ अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित से।

हंस की लाडली और घर में सबसे छोटी सबकी दुलारी माथुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था जो नन्ही माथुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस पॉल।

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म

1989 में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

वक्त के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गई।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गई, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय क्षमता

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अब भी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोलने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

1999 में माथुरी दीक्षित अमेरिका के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने के साथ विवाह बंधन में बंध गईं।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चकमक।

देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपहले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नचले।

सन 2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, जों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आईं। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए गांधी चिंतन, महात्मा गांधी और भगवत गीता।

गांधी जी के अनुसार मानव जीवन ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय है और स्वाध्याय पूर्वक गीता का किया गया अध्ययन जीवन के गूढ़ रहस्य को उजागर करता है। गांधी जी ने गीता माता में श्लोकों की शब्दों के सरल अर्थ देते हुए टीका की है। गांधी जी का विश्वास था कि जो मनुष्य गीता का भक्त होता है उसे कभी निराशा नहीं घेरती, वो हमेशा आनंद में रहता है। गांधी जी कहते हैं कि गीता शास्त्रों का दोहन है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सारे उपनिषदों का निचोड़ उसके 700 श्लोकों में आ जाता है, इसलिए मैंने निश्चय किया कि कुछ न हो सके तो भी गीता का ज्ञान प्राप्त कर लें। आज गीता मेरे लिए केवल बाइबल नहीं है, केवल कुरान नहीं है, मेरे लिए वो माता हो गई है। मुझे जन्म देने वाली माता तो चली गई, पर संकट के समय गीता माता के पास जाना मैं सीख गया हूँ। मैंने देखा है जो कोई इस माता की शरण में जाता है उसे ज्ञान अमृत देकर वो तृप्त करती है। कुछ लोग कहते हैं कि गीता तो महागूढ़ ग्रंथ है। स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने अनेक ग्रंथों का मनन करके पंडित की दृष्टि से उसका अभ्यास किया और उसके गूढ़ अर्थों को वो प्रकाश में लाए, उस पर एक महाभाष्य की रचना भी की। तिलक महाराज के लिए ये गूढ़ ग्रंथ था, पर हमारे जैसे साधारण मनुष्य के लिए ये गूढ़ नहीं है। सारी गीता का वाचन आपको कठिन मालूम हो तो आप केवल 3 अध्याय पढ़ लो, गीता का सार इन 3 अध्यायों में आ जाता है। बाकी के अध्यायों में वही बात अधिक विस्तार से

और अनेक दृष्टियों से सिद्ध की गई है। यह भी किसी को कठिन मालूम हो तो इन तीन अध्यायों में से कुछ श्लोक छांटे जा सकते हैं जिनमें गीता का निचोड़ आ जाता है। तीन जगहों पर तो गीता में ये भी आता है कि सब धर्मों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण ले। इससे अधिक सरल और सादा उपदेश और क्या हो सकता है। जो मनुष्य गीता से अपने लिए आश्वासन प्राप्त करना चाहे तो उसे उसमें से वो पूरा का पूरा मिल जाता है। जो मनुष्य गीता का भक्त होता है उसके लिए निराशा की कोई जगह नहीं, वो हमेशा आनंद में रहता है। गीता महाभारत का एक नन्हा सा विभाग है। महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, पर हमारे मत से महाभारत और रामायण ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है बल्कि धर्म ग्रंथ हैं। या उसे ऐतिहासिक ही कहना चाहें तो वो आत्मा का इतिहास है, और ये हजारों वर्ष पहले क्या हुआ ये नहीं बताता बल्कि प्रत्येक मनुष्य देह में क्या जारी है इसकी वो एक तस्वीर है। महाभारत और रामायण दोनों में देव और असुर के, राम और रावण के बीच नित्य चलने वाली लड़ाई का वर्णन है। ऐसे वर्णन में गीता कृष्ण अर्जुन के बीच का संवाद है। उस संवाद का वर्णन अंध धृतराष्ट्र से संजय करता है। गीता के मानी है गाई गई, यानी गाया गया उपनिषद। उपनिषद अर्थात ज्ञान बोध, यानी गीता का अर्थ हुआ श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया हुआ बोध। हमें ये समझकर गीता पढ़नी चाहिए कि हमारी देह में अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान आज विराजमान हैं, और अब जिज्ञासु अर्जुन रूप होकर धर्म संकट में अंतर्यामी भगवान से पूछेगा, उसकी शरण लेगा, तो उस समय वो हमें शरण देने के लिए तैयार मिलेंगे। हम भी सोए हैं, अंतर्यामी तो सदा जागृत हैं, वो बैठा राह देखता है कि हम में कब जिज्ञासा उत्पन्न हो, पर हमें सवाल ही पूछना नहीं आता, सवाल पूछने की मन में भी नहीं उठती। इस कारण हम गीता सरीखी पुस्तक का नित्य ध्यान धरते हैं, सवाल पूछना सीखना चाहते हैं, और जब जब मुसीबत में पड़ते हैं तब तब अपनी मुसीबत दूर करने के लिए गीता की शरण में जाते हैं और उससे आश्वासन लेते हैं। इसी दृष्टि से गीता पढ़नी है। वो हमारी सद्गुरु रूप है, माता रूप है, और हमें विश्वास रखना चाहिए कि उसकी गोद में सिर रखकर हम सही सलामत पार हो जाएंगे। गीता के द्वारा अपनी सारी धार्मिक गुत्थियाँ सुलझा लेंगे। इस भांति नित्य गीता का मनन करने वालों को उसमें से नित्य नए अर्थ मिलेंगे।

महात्मा गांधी और भगवद गीता, इस विषय पर अभी आपने सुना गांधी चिंतन। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में

महात्मा गांधी और भगवद गीता, इस विषय पर अभी आपने सुना गांधी चिंतन। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। इसमें सुनिए एक ही कलाकार, गायिका जसपिंदर नरूला पर विशेष कार्यक्रम, प्रस्तुति दीपक मेहता की।

वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। ये 102.9 मीरा चैनल, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, और मैं हूं दीपक। आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। एक ही कलाकार इस प्रोग्राम में, आज जिस कलाकार पर हम बात करने वाले हैं उनकी आवाज कुछ अलग है। जब उनके गाने सुने जाते हैं तो हर कोई कहता है हाँ ये आवाज कुछ अलग है। तो ऐसी ही उस अलग बेमिसाल आवाज की मलिका की आज थोड़ी थोड़ी बातें और उनके गाए हुए गाने आप तक पहुंचाएंगे हम। ये कलाकार हैं जसपिंदर नरूला।

जसपिंदर नरूला भारतीय पार्श्व गायिका, शास्त्रीय गायिका और सूफी गायिका। हिंदी और पंजाबी सिनेमा में आपने कई बेहतरीन गाने गाए हैं। कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में आप तक वो गाने पहुंचे।

1998 में आई फिल्म प्यार तो होना ही था के साथ आपकी एक अलग पहचान बनी, आपकी आवाज से सुनने वाले रूबरू हुए।

प्यार तो होना ही था फिल्म के इस गाने से उन्हें एक अलग पहचान मिली, वे प्रसिद्ध हुई इसी फिल्म के इसी गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें दिया गया था। इसके बाद मिशन कश्मीर, मोहब्बतें, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, बंटी और बबली जैसे कई गाने आए और लोगों ने उन्हें सुना। वो सूफी संगीत के साथ साथ गुरबानी और सिख धार्मिक संगीत की गायिका भी है। उनके बेहतरीन गानों की एक लंबी फहरिश्त है। एक के बाद एक गाने वो आप तक पहुंचते हैं।

जनवरी 2025 में जसपिंदर नरुला को भारत सरकार द्वारा भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

शुरुआत में जसबिंदर ने भजन और सूफी रचनाओं सहित भक्ति संगीत पर ध्यान केंद्रित किया और फिल्मों में पार्श्व गायन नहीं किया था, लेकिन बाद में दिल्ली में एक निजी समारोह में संगीत निदेशक कल्याण जी द्वारा उन्हें सुनने और अपने बेटे और संगीत निदेशक वीजू शाह से उन्हें मास्टर, आर्या पार, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्मों में मौका देने के लिए कहा। वे संगीत के क्षेत्र में अवसर तलाशने के लिए मुंबई चली गई। लोक और भक्ति कीर्तन निपुण तो थी ही, उन्होंने दुल्हे राजा, विरासत, मिशन कश्मीर, मोहब्बतें, बंटी और बबली जैसी सफल बॉलीवुड फिल्मों के लिए कई संगीत एल्बमों में अपनी आवाज़ दी।

उनके कई बेहतरीन गाने जो अभी जहन में आ रहे हैं एक के बाद एक आप तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये गाना भी उनकी अपनी एक अलग पहचान लिए हुए।

जसविंदर नरूला ने बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने गाए हैं और उम्मीद हम ये करते हैं कि आने वाले दिनों में हम और भी बेहतरीन गाने उनकी आवाज के सुन पाएंगे। बहरहाल आज का प्रोग्राम एक ही कलाकार बस यहीं तक। बहुत जल्द फिर मिलने के वादे के साथ अब दीपक मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के तहत एक ही कलाकार, गायिका जसपिंदर नरूला पर विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता दीपक मेहता।

हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को वर्षा अग्रवाल का नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जिंदगी का भरपूर मजा ले रहे होंगे। सखियों, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख उसी तरह आता है जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात। विपरीत परिस्थितियों में हमेशा धैर्य रखना चाहिए और मुसीबत में यदि हमारे अपने हमारे साथ होते हैं तो काफ़ी हद तक हम राहत महसूस करते हैं। परिवार की छांव में हर दर्द मिट जाता है। अपनों का प्यार जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। चाहे कितनी भी आए मुश्किलों की आंधी, परिवार साथ हो तो इंसान संभल जाता है। जी हाँ बहनों, परिवार की एकता ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में की थी। पहला विश्व परिवार दिवस 1994 में मनाया गया। इसका उद्देश्य परिवार के महत्व, एकता, प्यार और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। यह दिन हमें परिवार के साथ समय बिताने और रिश्तों को मजबूत करने की याद दिलाता है। परिवार हमारे जीवन की पहली पाठशाला होता है। यह हमें संस्कार, सहयोग, जिम्मेदारी और प्रेम सिखाता है। परिवार वो जगह है जहाँ जीवन शुरू होता है और प्यार कभी खत्म नहीं होता। सामंजस्य, प्रेम और अनुभवों की पाठशाला है परिवार। जीवन के हर सुख दुख में सबसे बड़ा सहारा है परिवार, जहाँ अपनेपन की खुशबू और रिश्तों का सम्मान होता है, वहीं हर इंसान के जीवन का सबसे सुंदर संसार होता है।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। और आज के कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी रेडियो साथी वर्षा अग्रवाल। बहनों, जब हम अपने कामों से फ्री हो जाते हैं तो सोचते हैं कि क्यों न कुछ समय परिवार के साथ या दोस्तों के साथ बिताया जाए। कई बार हम आमने सामने बैठकर बातें करते हैं तो कई बार फोन पर। जब हम अपने फ्री समय में बातें करते हैं तो जाने अनजाने में हम रिश्तों को मजबूत करने की बजाय उनकी डोर कमज़ोर कर देते हैं या उन्हें खो देते हैं। हम बात कर रहे हैं चुगली की। चुगली करना एक ऐसी बुरी आदत है जो धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां पैदा कर देती है। जब कोई व्यक्ति किसी एक की बात दूसरे तक गलत तरीके से पहुंचाता है या किसी की अनुपस्थिति में उसकी बुराई करता है तो उसे चुगली कहा जाता है। कुछ लोग चुगली को मनोरंजन या समय बिताने का साधन समझते हैं, लेकिन इसके परिणाम बहुत हानिकारक होते हैं। चुगली करने से आपसी विश्वास टूट जाता है और मन में कटुता पैदा होती है। कई बार छोटी सी बात बड़ा विवाद बन जाती है। बहनों, घरों में झगड़े और रिश्तों में दूरी का एक बड़ा कारण चुगली भी होती है। एक समझदार व्यक्ति हमेशा सकारात्मक बातें करता है और दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान देता है। हमें चाहिए कि हम बिना पूरी सच्चाई जाने किसी की बात को आगे न बढ़ाएं। यदि कोई हमारे सामने किसी की बुराई करे तो हमें उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। चुगली करने की आदत से बचकर ही हम अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। इसलिए हमें सदैव मधुर वाणी बोलनी चाहिए और दूसरों के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए।

बहनों, आज हिंदी सिनेमा की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, उत्कृष्ट नृत्यांगना और लाखों दिलों की धड़कन माधुरी

माधुरी दीक्षित का जन्मदिन है। उनका जन्म 15 मई 1967 को हुआ था। उन्होंने अपनी मेहनत, प्रतिभा और मुस्कान से भारतीय फिल्म जगत में एक विशेष पहचान बनाई। धक धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित ने 1984 में फिल्म अबोध से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और वे अपनी शानदार अभिनय व नृत्य के लिए पहचानी जाती है। उन्होंने कई फिल्मों में एक से बढ़कर एक अभिनय किया है। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में तेजाब, बेटा, दिल, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, देवदास जैसी कई फिल्में शामिल हैं। उनके फिल्मों में पारिवारिक संस्कार, प्रेम और भारतीय संस्कृति की सुंदर झलक देखने को मिलती है। माधुरी जी केवल एक महान अभिनेत्री ही नहीं बल्कि विनम्र और प्रेरणादायक व्यक्तित्व की धनी भी हैं। उन्होंने यह साबित किया है कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से हर सपना पूरा किया जा सकता है। उन्हें कई फिल्म फेयर पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। माधुरी दीक्षित की मुस्कान आज भी करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं उन्हीं की अभिनीत फिल्म हम आपके हैं कौन से ये खूबसूरत गीत।

बहनों, गर्मी के दिनों में तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण पक्षियों और बेजुबान जानवरों को भोजन और पानी ढूंढने में बहुत कठिनाई होती है। ऐसे समय में यदि हम अपने घर, छत, बालकनी, आंगन या मोहल्ले में दाने पानी की छोटी सी व्यवस्था कर दें तो यह उनके लिए जीवन दान बन सकता है। थोड़े से चावल, बाजरा, गेहूं या अन्य दाने भी छांव वाली जगह पर रखें ताकि पक्षी आराम से आकर भोजन कर सकें। तपती धूप में प्यासे हैं परिंदे सारे, आओ मिलकर रखें दाना पानी उनके सहारे।

बहनों, आज के महिला जगत कार्यक्रम से अपनी रेडियो साथी वर्षा अग्रवाल को दीजिए इजाजत। जल्द ही आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक अपना व अपनों का ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

गांधीज फेवरेट भजन बाय लता मंगेशकर। इस एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे नरसिंह मेहता का लिखा ये भजन, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: माजिद शोला कवाली की आवाज में सुन रहे थे आप ये कवाली। पायम सिद्दीकी सईदी ने इसे लिखा, मामी बाचू का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

कुसैर अल जाफरी के ये कलाम आप सुन रहे थे अशोक खोसला की आवाज में, कुलदीप सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे से आप सुन सकते हैं हेलो सहेली कार्यक्रम, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी।

अनूप जलोटा की आवाज में सबा अफगानी का कलाम आपने सुना, अनूप जलोटा का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष, ये श्रृंखला आप सुन सकते हैं। श्रृंखला की 28वीं कड़ी आज आपको सुनाई जाएगी। और हेलो सहेली कार्यक्रम 3 बजे से सुनेगा, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें होंगी पूरी। शाम 4 बजे होगा पिटारा में गीतों भरी कहानी का सिलसिला, कहानी जीवन एक सरल रेखा, जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगली गजल है ये, जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल सुनिए, द लेटेस्ट जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल इस एल्बम से, और इसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

सुदर्शन फकीर का लिखा यह कलाम आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। जगजीत सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

राहत इंदौरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और संजीवनी की आवाजें करीब फिल्म के इस गीत में संगीत अनु मलिक का। आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग और आपको ये बताते चलें कि रोजाना शाम 6:35 से संध्या रंजन इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत और संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। चौथी कड़ी आज सुन सकते हैं शाम 6:45 से और रोजाना इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह और शाम 6:45 से। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल उन्हीं का शब्द और एल्बम है सिल्क रूट बूंदे।

सिल्क रूट बूंदे इस फिल्म इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

एरा गैरा नथु खैरा इस एल्बम से सुनिधि चौहान की आवाज में समीर के बोल आप सुन रहे थे। राजू सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ गजलें भी आपको सुनवाई गई, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गजल कवाली पॉप गीत और लोकगीतों का संगम होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और गजलें सुनने का आपका मन है तो आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुन सकते हैं गुलदस्ता में गजलें, जो कि नॉन फिल्मी गजलें हैं। और इसके साथ ही 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार, जिसे लिखा है वीरेंद्र कश्यप ने, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। फिलहाल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर।

बाबा सहगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत, और इसे लिखा बाबा सहगल और देव कोहली ने, बाबा सहगल का संगीत। आपको बता दें कि आज रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर, और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं रेमो डिसूजा की आवाज में, माफ कीजिएगा, रेमो फर्नांडिस की आवाज में ये गीत ओ मेरी मुन्नी एल्बम से।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर का 12 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपए और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपए हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
4: परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत चुने गए हैं जिनमें पारिवारिक रिश्तों की भी बातें हैं और परिवार का आपसी संगठन, आपसी प्रेम भी दर्शाया गया।

बिल्कुल कुछ ऐसा ही तो होता है हमारा परिवार। हम फिल्म से गीत आपने सुना सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आज यादों की महफिल कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत जिनमें परिवार की एकजुटता के बारे में बताया जाता है या पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं।

दादी माँ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। आपको याद दिला दें कि दोपहर 3 बजे सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी हेलो सहेली कार्यक्रम में। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और दोपहर 2 बजे से सुन सकते हैं वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 28वीं कड़ी। शाम 4 बजे गीतों भरी कहानी में आज सुनेंगे सुनिएगा जीवन एक सरल रेखा, ये कहानी जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

घर घर की कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शब्बीर कुमार, चंद्राणी मुखर्जी, उत्तारा केलकर और साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत जिनमें पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं और साथ ही है पारिवारिक एकजुटता का संदेश।

किशोर कुमार की आवाज में ढोंगी फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आपको सुनवा रहे हैं ऐसे गीत जिसमें पारिवारिक एकजुटता

की बातें तो हैं ही, साथ ही है पारिवारिक रिश्तों का उल्लेख भी। कुछ ऐसा ही गीत आपको अब सुनवाने वाले हैं। साधना सरगम और साथियों की आवाजें हैं, महबूब के बोल, A.R. रहमान का संगीत, फिल्म डोली सजा के रखना। सुनिए ये गीत।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। रोजाना दोपहर 2:30 से आप सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और रोज रात छाया गीत होता है 10 बजे। अगर आप किसी दिन छाया गीत सुनने से रह जाएं तो चिंता ना कीजिएगा, सुन सकते हैं रोजाना शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण। विविध भारती पर इन दिनों आप कई कार्यक्रम सुन रहे हैं, और इस वक्त आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को बताते गीत या पारिवारिक एकजुटता को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

0: जो असली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती, जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है, वफादारी का शिकवा क्या जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
2: अरे क्या

परवरिश फिल्म के इस गीत को आप सुन रहे थे मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल दत्ताराम वाडकर का संगीत। आपको याद दिला दें कि 10 बजे रोजाना आप सुन सकते हैं छाया गीत कार्यक्रम, और अगर आपसे सुनना रह जाए या आप दोबारा सुनना चाहें तो हर शाम 5 बजे आप पहले दिन के छाया गीत का पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। आपके लिए यह कार्यक्रम रोजाना 9 बजे होता है और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। तो अब इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक संबंधों को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

क्या कहना, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन के साथ साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर याद कर रहे हैं वो गीत जिनमें परिवार के सदस्यों की बातें हों या पारिवारिक एकजुटता के बात हो।

एनिमल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज, राजशेखर की बोल, हर्षवर्धन रामेश्वरम का संगीत था इस गीत में। अगर आप नए गानों के शौकीन हैं तो सुनिए हमारा कार्यक्रम चित्रलोक रोजाना रात 8:15 से, और ये कार्यक्रम सुबह 8:30 पर भी आता है। दोनों ही समय आप सुन सकते हैं नए फिल्मी गीत विविध भारती पर। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को दर्शाते गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: इस गीत के साथ ही यादों के महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। और इससे पहले आपको बता दें, सत्य पे सत्ता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और राहुल देवबर्मन की आवाजों में। राहुल देवबर्मन का संगीत, गुलशन बावरा के बोल। और अब कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।
1: श्रोता अभी सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर का एक बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। दिन का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में नीट यूजी परीक्षा को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जून में होने वाली अगली परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले साल से कंप्यूटर आधारित

0: यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई नीट पेपर लीक मामले की तह तक जाएगी।
1: सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा इसके जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया, इसको सुधार किया ही जाएगा।
0: गौरतलब है कि नीट परीक्षा 2026 3 मई को हुई थी, किंतु पेपर लीक होने के कारण इसे निरस्त कर दिया गया। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है, बढ़ी हुई दरें आज से ही लागू हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। ईंधन बचत अभियान के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय से श्री शर्मा ईवी वाहन में कार्यक्रम में पहुंचे। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं।
2: राज्य में अभी तक 1,76,000 से अधिक उपभोक्ताओं के सोलर रूफ टॉप प्लांट लगाए जा चुके हैं। राज्य में स्वच्छ ऊर्जा की को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के अंतर्गत राज्य में 250 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी।
0: खैरथल तिजारा जिले को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए हो रहे कार्यक्रम से मुख्यमंत्री श्री शर्मा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव वीसी के जरिए जुड़े हैं। ईंधन बचत अभियान को लेकर जागरूकता संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम में ये लोग वर्चुअल भागीदारी कर रहे हैं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की आज 16वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्हें नमन किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने लिखा कि श्री शेखावत ने भारतीय राजनीति में सुशासन, संवेदनशीलता और जनसेवा की अमिट छाप छोड़ी। गरीब, किसान और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए उनका जीवन प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर श्री शेखावत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भीलवाड़ा जिले के मांडल चौराहे पर आज एक तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके साथ ले जाए जा रहे चोरी के आरोपी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कुछ देर यातायात बाधित रहा। हादसे के शिकार पुलिसकर्मी चित्तौड़गढ़ जीआरपी थाने में पदस्थापित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: EIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
0: और मैं अजीत। नमस्कार, राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं।

0: इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
1: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
0: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं:
1: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
0: गांव ओगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
1: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
0: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
1: संदेशों के लिए बहुत बहुत

0: सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
0: बिल्कुल।
1: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
1: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
0: बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो बिमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
1: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
0: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
1: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
0: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहाँ NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
1: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
0: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
1: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
0: जैसे
1: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
0: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
1: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
0: जैसे
1: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
0: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
1: तो श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
0: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चले? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है।

0: और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
1: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
0: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह।

0: उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
0: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या बॉल शुरू हो गई?
3: हाँ।
0: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
0: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सुबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
5: जी सुबेदार साहब।
4: बोले सोनिहाल।
5: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का।

0: कड़ाके की ठंड थी।
1: तेजा सिंह और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
2: साहब

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।

0: hated those crabs and lobsters. I suppose the other children hate me too. Well, I jolly well shan't pinch or prick any.
1: तो श्रोताओं, अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर होता है समाप्त। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

मासूम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रानू मुखर्जी की आवाज में। और हमने ये पढ़ा, हमारे साथियों ने कमेंट किया हुआ था कि भाई नानी का एक गीत तो सुनवा दिया लेकिन दूसरा गीत आपने नहीं सुनवाया। और हमारे बहुत से साथी तो रूठने का प्लान बना रहे थे लेकिन ये अच्छा हुआ कि उनका प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि छुट्टियों में नानी की बातें दो बार ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वहीं हमारे साथी ने बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे गीतों की फरमाइश भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्योंकि शब्द जो हों उनसे आधारित गीत ही हम सुनवा सकते हैं। हमारे एक और साथी ने बताया कि परिवार की बात चल रही है तो भाभी जी को ट्रेन से बुलवा लीजिए और मामा जी को रॉकेट पर घूमने चलते हैं। भाई दोनों काम करेंगे तो नानी जी के घर पे कौन रहेगा, तो इसलिए अभी इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं कि हमारी साथी कह रही कि आज जीवन का संध्या समय सुनहरे बचपन की मासूम अलहड़ बातें याद करने से सुखमय हो जाता है। प्रदूषण रहित सृष्टि का सानिध्य, नदी में नहाना, मछलियां देखना, नीम के पेड़ पर बंधे झूले पर झूलना, अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखना, विशाल वटवृक्ष की छाया में नानी के हाथ का घर का बना मक्खन और रोटी का नाश्ता, अमराई के आम खाते खाते सभी रिश्तेदार भाई बहनों के मेले में छुट्टियां कैसे गुजर जाया करती थी पता ही नहीं चलता था। वाकई वो दिन किस तरह से गुजरते थे हमें पता नहीं चलता था, शायद इस वजह से भी गर्मियों की जो छुट्टियां हुआ करती थी वो बड़ी छोटी लगती थी। हमारे साथियों ने बताया कि एक दूसरा जो मासूम फिल्म है वो भी है, लेकिन हमारे साथी थोड़ा ज्यादा दोनों मतलब उन्होंने गीत पसंद किए क्योंकि मासूम नाम से तो तीन फिल्में बनी हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि मासूम में लकड़ी की काठी वाला गीत है। और एक और साथी ने बताया छोटा बच्चा जान के कोई ना आंख दिखाना दे, ये भी मासूम फिल्म का ही गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कांच का कंचा, माचिस की अलग अलग छाप वाली, लोहे का पहिए को सरिये से चलाना, हाथों में चलने वाली तार की दो पहियों वाली से जुड़ा हुआ ऊपर तक छोटा स्ट्रिंग वाली हाथों से चलाकर तार की गाड़ी मैंने अपने हाथ से बनाई थी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि

मैंने नहीं तो

ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, नहीं लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लें। देखिए इस गीत में कई बार ये कहा गया कि अच्छी तरह से किया नहीं गया, जब वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो अच्छी तरह से आंख बंद नहीं की और चुपचाप देख लिया गया, वहीं जब उसे ढूंढ लिया जाता है तो भी कहा जा रहा है कि हम इस बात को नहीं मानते। तो इस तरह का खेल में कौन किया करता था कि

आप में से कोई ऐसा है जो ये किया करता था, खेल में एक बार पकड़े जाने के बाद कहता था कि हम नहीं मान रहे या हम नहीं खेल रहे, और इस तरह से रूठ जाता था, या घर के बड़ों को बुला के ले आता था कि भाई देखिए ये हमारे साथ इस तरह का काम करे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। तो क्या आप ऐसा करते थे, थोड़ी बड़ी बेईमानी करते थे खेल में, हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारे मामा लोगों ने कॉमिक्स बहुत सारी इकट्ठी करके उनको बाइंड करके रखा था, तो दोपहर में तो कहीं निकलने का सवाल ही नहीं था, हम लोग तो बस उसे ही पढ़ते रहते थे। हमारे एक साथी याद कर रहे हैं अपनी नानी को जो एक पैसों की थैली अपनी कमर में खोंस कर रखती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाथ का पंखा भी झला है, पंखे का फ्रेम आता था उसे हमने क्रोशे से बनाया है। गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल में जब लाइट नहीं थी तो गर्मी लगने पर हम दालान में लगे नीम के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते थे और अपनी हमउम्र मौसियों के साथ बड़े मजे करते थे। हमारे एक साथी ने सत्य घटना बताई कि बरसों पहले रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए एक छोटी सी रूप में बड़े मटके और लंबी मिट्टी की पानी का बर्तन, जिसे कोठी गुजरात में कहा करते हैं, कोई बुजुर्ग बैठे मुसाफिरों को गिलास में पानी पिलाते थे, कोई 2, 3, 5, 10 पैसा देते थे, निःशुल्क रेलवे की तरफ से व्यवस्था होती थी। स्टेशन में छोटी आधी गोल टंकी होती थी, ऊपर पानी का नल को दबाकर खड़े खड़े पानी पी सकते थे, तो नल के ऊपर का गोला उसे दबाते थे तो पानी आता था। मैंने बचपन में देखा था, एक बार एक बुजुर्ग दादा पानी पी रहे थे तो उनकी तरफ छिप गई और फिर वो बोल रहे थे कि बस अब नहीं, बस अब नहीं, लेकिन वो पानी बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद उन्हें हमने बताया कि गोला छोड़ेंगे तो पानी रुकता है, तो किसी ने आवाज दी, दादा आप नल की वो गोले को छोड़ दीजिए तभी पानी अपने आप रुक जाएगा। और पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग ऐसे भोले भाते होते थे, ऐसा हमारे साथी ने बताया। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि रात की छत, खुले आसमान के नीचे चारपाइयों पर लेटना, तारों को गिनना, सूरज ढलते ही मैदान आबाद हो जाते थे, ना कोई होमवर्क की चिंता, ना सुबह जल्दी उठने का डर, बस गलियों में क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई या गिल्ली डंडा। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन वो धूप में तपती दोपहरी वाली मस्ती भी एक अलग ही किस्म का सुकून देती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि नानी के घर जाते थे वो भी रेलगाड़ी से, उस पर भी यदि विंडो सीट मिल गई तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती थी, लेकिन भाई बहनों से लड़ाई भी होती थी और फिर बारी बारी से सब बैठते थे, सैर सपाटा, पिकनिक, बाग बगीचा सब कुछ जैसे पीछे छूट गया, क्योंकि अब तो स्वरूप भी बदल गया बहुत सारी चीजों का। और एक साथी कहते हैं कि गर्मी की छुट्टी का और रेलगाड़ी का बहुत पुराना नाता है, बचपन में जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम कैसे खुश हो जाते थे कि अब नानी दादी के गांव जाने को मिलेगा, वे दिन सैर सपाटे के थे, अब कहां चले गए पता नहीं चला। और हमारे साथियों ने बहुत से गीतों के बारे में लिखा है कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं, आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके लिस्ट में से कितने गीत आज के इस कार्यक्रम में अब तक शामिल हुए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, बताइए किसकी आवाजें हैं इसमें।

सुजाता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में। हमारे साथी कह रहे कि पहले के समय में फिल्म देखकर जो आते थे उसकी स्टोरी सुनाने का भी तो रिवाज था। हाँ, ये रिवाज तब भी बना हुआ है। और हमारे कर साथी कह रहे कि मेरे गानों की लिस्ट में से 6 गाने बच चुके हैं, किसी की लिस्ट में 4 में से 2 गाने शामिल हो चुके हैं, तो किसी की लिस्ट में से कुछ गाने शामिल हुए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो आगे के गाने आएंगे वो उनकी लिस्ट के गानों में से ही होंगे। हमारे एक साथी कहने की गर्मी की छुट्टियां बचपन की सबसे मीठी यादों का खजाना होती है। जैसे ही छुट्टियां शुरू होती मन में नानी के घर जाने की खुशी उमड़ पड़ती थी। रेलगाड़ी का सफर अपने आप में एक उत्सव सा लगता था। खिड़की से भागते पेड़, खेत, छोटे छोटे स्टेशन और कुल्हड़ वाली चाय आज भी यादों में मुस्कान भर देती है। आज समय बदल गया है लेकिन गर्मी की छुट्टियों के वे मधुर स्मृतियां आज भी मन को ठंडी छांव जैसा सुकून देती है। वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कि आजकल के बच्चे मोबाइल के मिसयूज में लगे रहते हैं, पूरे टाइम स्क्रीन में लगे रहते हैं, वो तो ये सारी गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं लेते। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि इसमें हमारी भी तो कोई गलती है, क्योंकि अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है तो वो जो सामने आएगा वही सीखेंगे। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब छोटे थे तब वेकेशन में नाना नानी या दादा दादी के घर जाते थे, ट्रेन में सबसे पहले खिड़की वाली सीट को हासिल कर लेते थे। पेड़ को पीछे की ओर जाते देखने में मजा आता था। मन में सवाल ये भी उठता था कि सूरज गाड़ी के साथ क्यों और कैसे आता जाता है। ट्रेन में खाने पीने की चीज लाने वाले सेल्समैन को देखकर लालच भी होता था, पर असली मजा तो घर से लाए हुए थेपले और अचार में ही आती थी। अरे आप जब ट्रेन का सफर करते थे तो क्या लेकर जाते थे अपने साथ खाने के लिए, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको ले चलते हैं ट्रेन के सफर पर। बताइए किस फिल्म का

परिणीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि खेलों में एक बेईमान का होना एक अलग ही मजा देता था, वाद विवाद ना हो तो क्या बचपना। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई बार बहुत सी मतलब बेईमानी तो थोड़ी बहुत करते थे, लेकिन बाद में कह दिया करते थे कि उन्होंने झूठ बोला है। तो इस तरह की मासूम बेईमानियां होती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम लोग घर से चावल, भुजिया, रोटी, आलू की भुजिया, गुजिया, ठेकुआ, चिप्स, बहुत सारा खाना लेके जाते थे, पेपर ले जाते थे, पानी ले जाते थे। भाई जो जाते थे इतनी खुशी होती थी, पर जब वापस आना होता था तो बड़ा दुख होता था। लेकिन क्या करें, उसके लिए भी तैयारियां होती थी नानी की तरफ से या दादी की तरफ से, जहां भी हम जाते थे। और मन में कुछ टीस की भाव होते थे, क्योंकि अगर गाड़ी हो सवेरे की तो जाना होता था। चलिए सुनते हैं वो गीत, बताइए किस फिल्म का।

लैड साहब फिल्म का ये गीत आपने सुना और जैसा इसमें कहा गया भी समय जब होता है तो जाना ही होता है, तो छुट्टियां खत्म होती है तो हम भी लौटते हैं और कार्यक्रम का वक्त भी हो चुका है तो हमें भी इस कार्यक्रम से लेनी होगी इजाजत। आप सभी बने रहिए विविध भारती के साथ क्योंकि विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहता है 24 घंटे।

श्रोता अभी सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर का 2 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले अंग्रेजी में तत्पश्चात हिंदी में, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: 10% for petrol and plus 3.4% for diesel. Benchmark domestic equity indices were trading moderately higher in afternoon trade today. The Sensex rose 165 points to 75,563, while the Nifty added 47 points to 23,737 when reports last came in. Meanwhile, in the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 was trading flat, while the small-cap 100 dipped nearly 0.2% a short while ago. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, in collaboration with the Ministry of Petroleum and Natural Gas today, launched an integrated hydrogen-powered shuttle bus service in the national capital to reduce fuel consumption and promote the use of public transport. The shuttle service will operate on all working days during peak office hours. It will provide seamless and environment-friendly last-mile connectivity between Central Secretariat and Sevatirth Metro stations and key government establishments in the Central Vista region. In badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vidithsarn in the men's singles quarterfinals. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindra Bosu elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन

0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर की। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते हैं NTA ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं।

0: से शुरू होगा 5-15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार है। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं।

0: ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक श्रोता सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

सदाबहार गीतों की बहार लिए कार्यक्रम के सदाबहार गीतों में हम आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं। आजाद फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे आप सुन सकते हैं गीतों भरी कहानी में श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी जीवन एक सरल रेखा। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में बारादरी फिल्म का गीत आपने सुना। खुमार बाराबंकवे ने इसे लिखा, शौकत दहलवी नौशाद का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत फिल्म उड़न खटोला के इस गीत में।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज आवाज गीता दत्त मोहम्मद रफी की। और अगर आपको पुराने गाने सुनते सुनते नए गाने सुनने का मन करता है और नए गाने सुनते सुनते आप पुराने गाने सुनना चाहते हैं तो आपके लिए भी है एक कार्यक्रम हमारे पास। शाम 5:30 पर रोजाना आप सुन सकते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, जिनमें पुराने और नए गानों को मिलाकर ही तैयार की जाती है लिस्ट गानों की। तो आप सुनिएगा ये कार्यक्रम आज भी और रोजाना। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अगला गाना।

0: गोपी नैयर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा जानिसार अख्तर ने। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना सीआईडी फिल्म का ये गीत। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कौन सा कार्यक्रम कब आएगा विविध भारती पर, इसके लिए आपको सीआईडी की तरह पड़ताल करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी नहीं। आप सुबह और शाम 6:30 से सुन सकते हैं कार्यक्रम विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह के झरोखा में बताए जाते हैं दिन भर के प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। वहीं शाम के झरोखा में आप सुन सकते हैं शेष कार्यक्रमों के साथ साथ अगले दिन के सभी मुख्य कार्यक्रमों का विवरण भी। और अब हम दे देते हैं आपको विवरण अगले गीत का, जो है बारिश फिल्म से आशा भोसले और सी रामचंद्र की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।
1: जो सीने में दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते।

राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। नाशाद का संगीत, आशा भोसले की आवाज, बड़ा भाई फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोजाना शाम को 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सजते हैं अलग अलग कार्यक्रम के रंग, और आज आप सुन सकते हैं गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता इस श्रृंखला के अंतर्गत 7:45 से। और इस वक्त सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आप

0: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

सखियों, भावनाएं जब शब्दों का हाथ थामती हैं, तब रिश्तों में अपनापन खिल उठता है। जब दिल बोलता है तो शब्द केवल आवाज नहीं, आत्मा का संगीत बन जाते हैं, है ना? अपने परिजनों से दिल

0: की बात साझा करना मानो बंद खिड़की से ताजी हवा का भीतर आना है। और विविध भारती भी अपना एक बड़ा पूरा परिवार है, तो आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है मैं आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। और इस चिलचिलाती गर्मी में आपके फोन कॉल्स देंगे हमें सुखद एहसास, तो जल्दी से फोन घुमाइए, देखते हैं कौन सी सखी का पहला फोन आता है। और ये बजी घंटी और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं आप?
1: मैं विनीता पाठक बोल रही हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। सोनाली जी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और अब जाके मेरा नंबर लगा है।
0: बहुत बहुत बधाई। और पहली बार आपको कॉल लगा है?
1: जी, पहली बार मेरा कॉल लगा है
0: जी। तो विनीता जी बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पर मैं मिलेट्स से रिलेटेड बेकरी आइटम बनाती हूँ। बेकरी में सभी लोग कुकीज पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम डेली रूटीन में काम आने वाली ब्रेड, पाव, पिज्जा बेस, बर्गर, हम ये बना रहे हैं ताकि जो टीन एजर्स बच्चे हैं वो अपनी चॉइस का पिज्जा और ये सब खाएं, तो हेल्दी बेस के साथ खाएं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं।
0: क्या बात है। मिलेट्स यानी फिर रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इनसे बनी बेकरी आइटम्स आप बनाते हैं ना?
1: जी।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को चटपटा खाना पसंद होता है, पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसमें मैदा होगा या वनस्पति घी होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप जो इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करके बेकरी आइटम बना रहे थे, ये तो बहुत अच्छी बात है। विनीता जी, आज 15 तारीख है, 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि परिवार की क्या अहमियत है आपके जीवन में?
1: परिवार सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम आजकल जो छोटी फैमिली हो गई है उसके बहुत सारे लॉसेज हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो हम भाई बहन एक साथ हो गए और हम बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से निकाल ले जाते हैं, और कोई छोटा सा भी पर्व हो उसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और हमारे साथ साथ हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे आपस में मिल के मतलब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहां तक जा रही है, तो वो लोग भी अब इतना समझ में आने लगा है कि नहीं, फैमिली तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप अकेले पड़ जाओगे। तो हर खुशी के मौके में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब साथ होते हैं।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, जैसे आप कुछ काम कर रही हैं, तो उस वक्त जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त दादा दादी नाना नानी का उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों को संभालने के लिए।
1: बिल्कुल। मैं भी बहुत निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर मैं काम पे निकल जाती थी, क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, हम लोग सब भी साथ में रहते थे, तो बच्चा कब बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया और इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो सभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं। जी,
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। विनीता जी बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये 1973 की एक मूवी है, यादों की बारात। हाँ जी, तो ये मुझे गाना बहुत पसंद है, इसे आशा जी और मोहम्मद रफी सर ने गाया है और जीनत अमान और विजय अरोड़ा पे फिल्माया है, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो अगर ये सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: जी विनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सहेली बात कर रही है?
1: जी मेरा नाम वर्षा धगट है। जी मैं वैसे तो मुंबई की हूँ, पर अभी फिलहाल छुट्टियों पर जबलपुर आई हुई हूँ, मध्य प्रदेश में।
0: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं?
1: बिल्कुल सही पहचाना आपने, मायके आई हुई हूँ।
0: यानी मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में, ना?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अच्छा वर्षा जी, बताइए आपके बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं वैसे एक्ट्रेस हूँ, टीवी टेलीविजन करती हूँ, और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, म्यूजिकल शोज होस्ट करती हूँ, और थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं वर्षा जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है?
1: ओ, सवाल वाकई बहुत अच्छा सवाल किया सोनाली जी आपने। और परिवार की अहमियत, मेरे ख्याल से परिवार के बिना तो हर कोई अधूरा है, और शादी जैसे ही होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है, और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है,
0: चाहे फिर वो ससुराल हो या मायका हो, है ना?
1: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है।
0: और सच
1: ये हर महिला, मेरे ख्याल से भारत की हर महिला का यही किरदार होता है।
0: और परिवार का अगर हमें साथ मिलता है ना, तो हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई तो है, है ना?
1: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंची। एम आई राइट?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल मिलता है जब परिवार का साथ होता है हमें।
1: बिल्कुल, हर महिला को खासतौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती है।
0: जी बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़ेगी।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली जी आपने। जी
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है सहेली जी आपका?
1: प्रगति मुड़े।
0: प्रगति मुड़े जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: नांदेड़ से।
0: नांदेड़ से फोन लगाया। प्रगति जी आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी।
0: हाउसवाइफ हूँ।
1: हाँ।
0: मैं हाउसवाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ, मैं काम चोर मूवी का तुझे संग प्रीत लगाई करें।
0: बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल।
0: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सखी सहेली सुनती हूँ।
0: और हेलो सहेली भी सुनती है?
1: और हेलो सहेली
0: जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो चलिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन सहेली बात कर रही है?
1: मैं साक्षी खिरवड़कर बोल रही हूँ।
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश।
0: साक्षी जी, जरा अपने बारे में बताइए।
1: जी मैं गृहिणी हूँ, अपना घर संभालती हूँ अच्छे से और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत
1: अपने लिए
0: अच्छी
1: समय
0: बात।
1: निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: साक्षी जी, आज है परिवार दिवस, 15 मई
1: जी
0: को हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं
1: जी
0: आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं। उन्हीं
0: जी
1: के आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है, बहुत
0: जी
1: महत्व है सभी के लिए।
0: सचमुच, यानी परिवार ही हमारे
1: जी
0: जीवन का आधार है ना?
1: जी
0: और हम महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना?
1: जी जी बहुत
0: और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे हेलो सहेली, सखी सहेली बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है,
1: जी
0: तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है आपका?
1: अंबिका विजय मारवाड़ी
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से।
0: शिरपुर से फोन लगाया जी।
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं मेस चलाती हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना।
1: जी,
0: बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके?
1: हाँ, खुशी मिलती, खाने को आते जाते वो अच्छा खाना बनाया बोलते कभी कम ज्यादा हो जाता है।
0: और सचमुच जब कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना तो हमारी जो थकान है ना वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: हाँ, खाने की तो अच्छी से अपनी थकान जाती, सब अच्छे बोलते खाने का।
0: हाँ, यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत से फल मिलता ऐसा हो जाता।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है।
1: हाँ,
0: और रेडियो सुनती है आप?
1: हाँ।
0: कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
1: तो हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश,
1: गाने सुनते हो? तो रहता रेडियो है, दिन भर
0: रेडियो चालू रहता। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर, मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है आपका?
1: राजबाई। राजबाई धाकड़।
0: राजबाई धाकड़, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: बड़े गांव से।
0: बड़े गांव?
1: गुना जिले।
0: जी, तो क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोते हैं, धना बोते हैं, चना बोते हैं।
0: क्या बात है,
1: खेती बाड़ी काम करे हैं अपन।
0: बहुत अच्छी बात है, जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे लोगों को इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
1: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने और दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
0: क्या बात है, सच मुझे यानी परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना?
1: अच्छा लगे, देवर है, देरानी है, देवर के मोड़ा मोड़ी है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। और रेडियो सुनती हैं कि नहीं आप?
1: हाँ, रेडियो सुनती हैं।
0: अच्छा लगता है रेडियो सुनना?
1: बहुत अच्छे लगे हैं।
0: और बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती है आपके पसंद का?
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो गाड़ी दोगाड़ी।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, और विविध भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते। मेरा
0: क्या नाम है आपका?
1: नाम सुनंदा है।
0: सुनंदा जी, कहाँ से फोन लगाया?
1: हम यवतमाल महाराष्ट्र से है।
0: यवतमाल से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए सुनंदा जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं तो घर में रहती हूँ मैडम, खाना बनाती।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में रहना यानी बहुत सी आम जो महिलाएं होती है ना, गृहणियां होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हम तो घर में रहते, पर घर में रह के भी बहुत अच्छा काम करती है। आपके बदौलत आपके परिवार के लोग जो है ना, आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं। घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और रेडियो सुनना पसंद है आपको?
1: बहुत बहुत पसंद है।
0: कौन सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हमको सच्ची सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद है।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए।
1: लक्ष्मी विलास भोले
0: जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगाया, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर घर का काम सिंपली।
0: घर का काम करती है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती है कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती हैं आप। आपकी बदौलत ही जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि वे लोग खुश है कि चलो कोई तो है घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर

0: से घर आए तो हमें कितना अच्छा लगता है, घर साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना, सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों को खुश रहना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ हम हाउस क्वीन है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती हैं आप, कभी खुद की खुशी का काम करती हैं आप, यानी खुद के लिए जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती हैं अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं, वो तो टाइम नहीं मिलता, ऐसे दिन में बच्चों का वो करते करते टाइम ये हो जाता है।
0: टाइम निकालना जरूरी है।
1: हमारा खेत में जाना पड़ता।
0: खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके कौन, मतलब माई माई गाना है।
0: हम आपके हैं कौन फिल्म का, माए ने माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: हम रेखा मुखर्जी, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद साटुई से बोल रहे हैं।

0: है।
1: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में?
0: हम हाउसवाइफ हैं, रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो साहिल है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकाल में फोन में बात करते हैं रेडियो में, आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं। हम पोयम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लपेट लेते हैं, गान सुनते हैं, रेडियो का साथ जुड़े रहता है।
1: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर घर में भी रहती हैं, यानी पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
0: हाँ, हम चाहे सिलाई सिलाई उलाई भी करते हैं।
1: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, है ना?
0: हम अकेले सब समेट लेते हैं।
1: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी कि खुद के लिए आप जीते हैं कि ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये एक घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
0: हाँ करते हैं, एक घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं।
1: और उसमें आपको खुशी मिलती है?
0: खुशी मिलते हैं, हाँ, अपना हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
1: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना तो परिवार भी खुश रहता है और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और आप
0: विविध भारती सुनते हैं जी?
1: जी। और आपने पसंद
0: दो महीना से छटपटा रहे थे, हाँ जी, कब दो महीना पूरा होगा?
1: अच्छा चलो बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
0: सत्यम शिवम सुंदरम।
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
0: जसमती मैया तेरे बोले नंद लाला।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली। क्या
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए
1: हाँ,
0: अपने बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रतापगढ़ है, ताज तालाब है, महाबलेश्वर है
0: जी। सातारा घूमने
1: जी,
0: लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है,
0: जी।
1: नटराज मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए, कभी शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं जिंदगी में?
1: दीदी मैम, तो मैं जॉब में हूँ, मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी साड़ी सेंटर में हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी लिए, खास आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी
1: हाँ,
0: ना आज कि फोन लग गया है।
1: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया। मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही हूँ, 4 महीने बाद मेरा फोन

0: क्या बात है, बहुत
1: मैं
0: अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें। और आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, तो आप खुद के लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
1: जी मेरा 57 एज है दीदी, 57। मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इसी वास्ते मैं 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ
0: क्या बात
1: साड़ी
0: है।
1: सेंटर में। हाँ, सिटी साड़ी सेंटर में।
0: यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
1: हाँ, और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल पे है। मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है,
0: जी
1: 11:30 बजे तक। हाँ, गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
0: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं
1: हाँ,
0: प्यारे प्यारे गीत सुन के।
1: बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकियो का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है,
0: क्या
1: उससे
0: बात
1: काम
0: है,
1: मेरा चल जाता हूँ, और मैं बहुत ही खुश हूँ।
0: ये बात है। नहीं तो देखिए, लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच आपसे
1: नहीं
0: सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना।
1: जरूरी है, बराबर है दीदी।
0: जी बताइए, कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती हैं?
1: बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूप की रानी।
0: बहुत प्यारा गीत आपने चुना, ये गंगाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?
1: धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोला रंग का

तो ये रहा आज का हेलो सहेली प्रोग्राम। सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार।

0: सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह हैं 400-24662 यानी 400-24662। दूसरा नंबर है 2867-0288 2867-0288। और मुंबई का STD कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे। पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की देहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल काय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। अब फिर तो ठीक है, त्योहार से ज्यादा का जरूरी है? सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में

गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न हैं, उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं हैं। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी। हो सके तो नया मोबाइल लेती हूं जिसका कैमरा शानदार हो।

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर लीं। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्य ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई? ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं, मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम? बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है, क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्य कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्य आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी, बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ कश्मीर मैडम। आज पर आचार्या भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, यह वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधारताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना। देखो हम 150 रुपया लेंगे। ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी

पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई। आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाक्य अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है, वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संझा की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद ननोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना? फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए। क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकंठ यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का

सुन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकांत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी है, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने 1 साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुरमुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है, मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे, वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी, कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था, क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ, नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है, पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी?

इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा यूपीआई पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी, और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं था।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 102.9 MHz पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। इस वक्त शाम के ठीक 5 बज रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या साथियों। मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त महेंद्र खेरा और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल। कार्यक्रम है फिल्म संगीत। आज हमने इस कार्यक्रम को समर्पित किया है परिवारों पर, क्योंकि आज है विश्व परिवार दिवस। किसी ने एक बार मुझसे पूछा कि वो कौन सी जगह है जहां पर हमें निस्वार्थ भाव से प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, परिवार। इसलिए कार्यक्रम का हमारा पहला गीत भी हम समर्पित करते हैं इस दुनिया के तमाम परिवारों को। इस गीत को हमने चुना है फिल्म हम साथ साथ हैं से।

ये तो सच है कि भगवान है। कितनी सही बात हमने सुनी इस गीत के माध्यम से। फिल्म का नाम था हम साथ साथ हैं। फिल्म का नाम हमने सुना है अभी, हम साथ साथ हैं। बहुत ही प्यारे और मीठे बोल। दोस्तों, मीरा चैनल पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत में आज की विशेष पेशकश विश्व परिवार दिवस पर। दोस्तों, अगर हम कुछ दशक पीछे जाएं तो हमारे यानी कि भूतपूर्व पारिवारिक परिदृश्य की अगर हम बात करें तो आंखों के सामने एक बड़ा सा आंगन आ जाता है। वो संयुक्त परिवार जहां एक ही छत के नीचे दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और ढेर सारी

दशक पीछे जाएं तो हमारे यानी कि भूतपूर्व पारिवारिक परिदृश्य की अगर हम बात करें तो आंखों के सामने एक बड़ा सा आंगन आ जाता है, वो संयुक्त परिवार जहां एक ही छत के नीचे दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और ढेर सारे बच्चे रहा करते थे। आपको याद आया कि नहीं आया? अगर आपको याद आया तो बिल्कुल आपके परिवार में इस तरह की कभी परिस्थितियां हुई हो तो आप बिल्कुल हमें ईमेल करिएगा हमारे ईमेल के पते पर akashwanichittorgarh@gmail.com पर। फिलहाल मुझे उस सीन पर एक छोटी सी कविता याद आ रही है। वो कच्चे घर की मिट्टी की महक, वो चौपाल पर अपनों की चहक, वो कच्चे घर की मिट्टी की महक, वो चौपाल पर अपनों की चहक, जहाँ एक के रोने पर सबके आंसू आते थे, वो भी क्या दिन थे जनाब जब सब साथ मुस्कुराते थे। तब दोस्तों सुख दुख बट जाया करते थे, किसी एक पर भार नहीं आता था। आज भले ही वो बड़े आंगन छोटे हो गए हों, लेकिन उन दिनों की यादें आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है और ताज़ा हमेशा रहेगी। तो आइए उन खूबसूरत सुनहरी यादों को ताज़ा करते हैं, उन यादों को हम इस बहुत ही प्यारे खूबसूरत नगमे के साथ। फिल्म का नाम यादों की बारात।

किया है परिवार को, क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व परिवार दिवस। दोस्तों, इस घर में यानी कि हम अगर परिवार की बात करें तो परिवार चाहे कल का हो या फिर आज का हो, इस परिवार में एक शख्सियत ऐसी होती है जो पूरे घर को एक धागे में पिरो कर रखती है, और आप तो पता ही है वो कौन है, वो होती है माँ। किसी शायर ने माँ के लिए क्या खूब कहा है कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। पिता अगर घर की छत है तो माँ उस घर की नींव है, वो माँ ही है जो सबके उठने से पहले उठ जाती है और सबके सोने के बाद सोती है। हमारी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखने वाली उस माँ को आज के इस परिवार दिवस पर नमन करना तो बनता ही है। तो इस वक्त आपके दिमाग में माँ को लेकर कौन सा गीत बज रहा है, जरा हम जानना चाहेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में जो गीत बज रहा है, पहले वो हम आपको सुनवाते हैं।

यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, और मुझे यकीन ही नहीं, बिल्कुल उम्मीद है कि आपकी भी यादों की बारात अपने परिवार को लेकर निकल चुकी होगी। आपको भी बहुत सारी बातें इस वक्त आपके दिमाग में आ रही होगी अपने परिवार को लेकर और पुराने समय और आने वाले समय को लेकर। दोस्तों, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से, और इस कार्यक्रम को आज हमने समर्पित

दोस्तों फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से मेरे साथ यानी कि आपके रेडियो वाले दोस्त महेंद्र खेरारो के साथ। मीरा चैनल पर गीतों और बातों का कारवाना तो ये आगे बढ़ रहा है दोस्तों। हमने पुराने दौर की बात की है लेकिन अगर आज की वर्तमान परिस्थिति पर नजर डालें तो तस्वीर काफ़ी बदल चुकी है। पढ़ाई और रोजगार की तलाश में हमें अपने उन बड़े आंगनों से निकलकर शहर के छोटे छोटे फ्लैट्स यानी कि एकल परिवार में लाकर हमको खड़ा कर दिया गया है। आज हम एक साथ खाना खाकर बैठने के बजाय वीडियो कॉल पर डाइनिंग टेबल को शेयर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार कम हो गया है। आज भी एक पिता अपने बच्चे की कामयाबी के लिए दिन रात एक कर रहा होता है। बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार का

नाम रोशन करना चाहते हैं। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या हो, तो ये हौसले भी जिद्दी हैं। इसी हौसले और पिता की उम्मीदों को बयां करता हुआ कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म का नाम कयामत से कयामत तक।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। यदि हमारे कई सारे श्रोता और कई सारे यूथ भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और यदि आपके पेरेंट्स भी आपसे कुछ उम्मीद लगाए हुए हैं तो प्लीज़ उन्हें निराश मत करिएगा, क्योंकि परिवार की उम्मीद तो आप ही हैं। और परिवार पर आधारित कार्यक्रम विश्व परिवार दिवस पर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। अब दोस्तों, हम इस कार्यक्रम में अगले गीत की ओर चलते हैं और बात करते हैं उस खट्टे मिट्टे रिश्ते की जिसके बिना परिवार अधूरा होता है। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, भाई बहन के उस खट्टे मिट्टे रिश्ते की। तो घर में सबसे ज़्यादा लड़ाई भी भाइयों की उसी से होती है। अगर वो घर पर ना हो तो सबसे ज़्यादा कमी और सबसे ज़्यादा चिंता भी बहन की होती है। तो चार पंक्तियाँ इस खूबसूरत से रिश्ते के लिए मैं इस वक्त आपसे कहना चाहूँगा कि रूठना मनाना और फिर एक हो जाना, बचपन के वो किस्से और वो मुस्कुराना, दुनिया की हर दौलत फीकी है उस प्यार के आगे जो बांधा है भाई बहन के पक्के पक्के कच्चे पक्के धागे। तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, पहले की हो चाहे आज की हो, यानी कि भूतपूर्व हो चाहे वर्तमान हो, भाई बहन का ये रिश्ता हमेशा वैसा ही मासूम रहता है।

दोस्तों, आपसे बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब 30 मिनट आधा घंटा पूरा हो गया और इस कार्यक्रम के हम आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं, यानी कि आपसे अनुमति लेने वाले पड़ाव में। दोस्तों, समय बदलता है, पीढ़ियां बदलती हैं और रहने के तौर तरीके भी बदलते हैं। कल हम संयुक्त परिवार में थे, आज हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं। कल हम चिट्ठियों का इंतजार करते थे, आज हम व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं। माध्यम बदल गए हैं लेकिन रिश्तों की अहमियत आज भी वही है। आज विश्व परिवार दिवस के मौके पर हम अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा वक्त जरूर बिताएं। अगर आप उनसे दूर हैं तो आज उन्हें एक फोन कॉल जरूर करें और कहें कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। जाते जाते बस एक शेर अर्ज करूंगा कि यूं तो हर मुकाम पर मिलते हैं अजनबी कई, पर जो दिल को सुकून दे वही अपना परिवार है। इसी संदेश के साथ आप सभी अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहिए और मुझे यानी अपने रेडियो वाले दोस्त महेंद्र खेरारू को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम FM 102.9 MHz पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। इस वक्त शाम के ठीक 5:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मेरे सभी प्रिय साथियों को आज की शाम का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी, एक ऐसा मंच जहां हम करते हैं ऐसे विषयों पर बातें जो हमारी जिंदगी और सोच से जुड़े होते हैं। दोस्तों, आज के समय में हम सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और स्टार्टअप संस्कृति ने हम सभी को बड़े सपने देखने का हौसला दिया है। कम उम्र में सफलता पाने की चाह अच्छी है, लेकिन केवल जल्दी पैसा कमाने की सोच कभी कभी हमें गलत दिशा में भी ले जाती है। आज इंटरनेट पर हर दिन नए बिजनेस आइडियाज और सफलता की कहानियां देखने को मिलती है। इन्हें देखकर कई बार हम भी बिना पूरी जानकारी और योजना के जल्दीबाजी में फैसले लेने लगते हैं। कुछ लोग दूसरों की चमक दमक देख कर निवेश कर बैठते हैं, तो कुछ लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। किसी भी व्यवसाय की शुरुआत करने से पहले उसके बारे में सही जानकारी लेना, अनुभव हासिल करना और समझदारी से कदम बढ़ाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर चमकती चीज़ सफलता की गारंटी नहीं होती। दोस्तों, आत्मनिर्भर बनना और अपने सपनों को पूरा करना अच्छी बात है, लेकिन धैर्य, मेहनत और सही सोच के साथ लिया गया निर्णय ही हमें सही मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सपने तो देखें, लेकिन उसके साथ सतर्कता और समझदारी भी बनाए रखें। और इसी संदेश के साथ मैं हूँ आपकी रेडियो साथी भाविका, और आइए दोस्तों सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आज के समय में जहां मोबाइल और डीजे की तेज धुनों से संगीत की दुनिया को बदल दिया है, वहीं राजस्थान का एक छोटा सा लोक वाद्य आज भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है, और वो है मोरचंग। शायद नाम सुनकर कुछ लोगों को ये साधारण लगे, लेकिन इसकी आवाज इतनी अलग और आकर्षक होती है कि एक बार सुनने के बाद लंबे समय तक कानों में गूंजती रहती है। इतिहासकारों के अनुसार मोरचंग सदियों पुराना लोकवाद्य है, जिसे पहले राजस्थान के चरवाहे और लोक कलाकार बजाया करते थे। धीरे धीरे ये राजस्थानी लोक संगीत की खास पहचान बन गया। दोस्तों, मोरचंग की सबसे खास बात ये है कि छोटा सा दिखने वाला ये वाद्य बिना ज़्यादा शोर के भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। यही वजह है कि आजकल कई युवा कलाकार भी फ्यूजन म्यूजिक और लाइव परफॉर्मेंस में इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। ये केवल एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, बल्कि हमारी लोक संस्कृति और परंपरा की पहचान भी है। और दोस्तों, अगर आपको कभी मोरचंग की लाइव धुन सुनने का मौका मिले ना, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इसकी आवाज़ सिर्फ संगीत नहीं सुनाती, बल्कि हमारे मन को खुश कर देती है। दोस्तों, वैसे तो अगला गीत आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इस बार जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिए कि क्या आपको उसमें छिपी मोरचंग की आवाज़ पहचान पाते हैं या नहीं। तो चलिए सुनते हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हर व्यक्ति अपने काम और जिम्मेदारियों में व्यस्त है, वहीं परिवार का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। परिवार केवल रिश्तों का नाम नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और सहयोग और संस्कारों को की वो नींव है जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। इसी महत्व को समझाने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1993 में की गई थी, जबकि पहली बार ये दिन 15 मई 1994 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य

लोगों को परिवार के महत्व के प्रति जागरूक करना और समाज में पारिवारिक मूल्यों को मजबूत बनाना है। दोस्तों, परिवार ही वो पहला स्कूल होता है जहां हम बोलना, चलना, सीखना, समझना, सम्मान करना और एक दूसरे का साथ निभाना सीखते हैं। जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, परिवार का साथ हमें हिम्मत देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। आज की आधुनिक जीवन शैली और मोबाइल की दुनिया में कई बार हम अपने ही परिवार को समय देना भूल जाते हैं। एक ही घर में रहते हुए भी आपस में कम बातचीत कर पा रहे हैं। ऐसे में ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए समय और अपना मन अपनापन दोनों बेहद ज़रूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने परिवार के साथ हर रोज़ कुछ पल बिताएं, बातचीत करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और रिश्तों में प्रेम और विश्वास को बनाकर रखें, क्योंकि जीवन में जीवन की सबसे बड़ी ताकत वही लोग होते हैं जो हर परिस्थिति में बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ खड़े रहते हैं, और वो होता है हमारा अपना परिवार।

दोस्तों, हिंदी साहित्य को नई दिशा देने वाले महान साहित्यकारों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। हिंदी भाषा को सरल, प्रभावशाली और समाज से जोड़ने में उनका योगदान अतुलनीय माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 15 मई 1864 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। वे केवल एक लेखक ही नहीं बल्कि महान संपादक, समाज सुधारक और मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को नई सोच और नई पहचान देने का काम किया। उन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के संपादन के माध्यम से हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके संपादन काल को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन तक सीमित न रखकर उसे समाज जागरूकता और राष्ट्रभक्ति से भी जोड़ा। उन्होंने कई नए लेखकों और कवियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। हिंदी के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त सहित अनेक साहित्यकारों को प्रेरणा देने में उनका योगदान रहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन हमें ये सिखाता है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, ये समाज को जागरूक और मजबूत बनाने की शक्ति भी होती है। आज उनके दिवस पर उन्हें याद करना और हिंदी भाषा के प्रति सम्मान बनाए रखना हम सभी के लिए गर्व की बात है।

दोस्तों, तेज धूप, बढ़ता तापमान और गर्म हवाओं का असर हीट वेव यानी लू के रूप में हमारे सामने है। ये केवल सामान्य गर्मी नहीं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। थोड़ी सी लापरवाही हमें बीमार कर सकती है, इसलिए इस मौसम में सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत तेज होती है। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सिर को टोपी, गमछे या छाते से ढक कर रखें। हल्के रंग के सूती वस्त्र पहने, शरीर को हाइड्रेट रखें। पानी, नींबू पानी या ORS का सेवन करते रहें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये लू से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। चक्कर आना, सर दर्द, तेज बुखार, उल्टी या कमजोरी महसूस हो तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। तुरंत ठंडी जगह पर जाएं और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें। गर्मी से बचाव ही सबसे बेहतर इलाज है। अपनी सेहत का ध्यान रखें, दूसरों को भी जागरूक करें और इस भीषण गर्मी में सुरक्षित रहें।

दोस्तों, मुझे आपसे बातें तो और भी करनी है, लेकिन हमारा आज का साथ बस यहीं तक का था। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई बात नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्ती करते रहिए। नमस्कार।

अभी आपने सुना युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी FM 102.9 MHz पर। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। इस वक्त शाम के ठीक 6 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। श्रोताओं, सबरस कार्यक्रम की पहली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित कुमार गंधर्व के स्वर में।

0: पंडित कुमार गंधर्व के स्वर में इस रचना को भी आपने सुना। कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ की मीरा चैनल से। क्या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल स्टोरी और रील्स देखने के लिए करते हैं? तो आप सोशल मीडिया को बनाइए और भी मजेदार हमसे जुड़कर। वो भला कैसे?
1: कुछ बातें आपको कहनी होती है मगर आप कह नहीं पाते, कुछ बातें आप सुनना चाहते हैं लेकिन कोई कहने वाला नहीं, कुछ बातें आपको अच्छी लगती हैं और कुछ नहीं भी लगती।
0: ये किस तरह की बातें होती होंगी, कौन सी होती होंगी? बस आपके दिल की ऐसी ही बातों को समेटे हम आ रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर।
1: सोशल मीडिया पर साझा करिए अपने दिल की बात किसी भी विषय पर, सुनिए उसे एफएम मीरा पर अपने खास गीतों के साथ।
0: ये कुछ बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं फेसबुक पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के पेज पर।
1: इंस्टाग्राम पर कहना चाहते हैं तो सर्च करिए AIR चित्तौड़गढ़। तो अब सोशल मीडिया को यूज करिए और साथ ही उसका लाभ भी उठाइए।
0: सुनिए जरूर कुछ बातें कुछ गीत
1: प्रत्येक सोमवार शाम 7:30 बजे।
0: श्रोताओं सबरस कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं पुरुषोत्तम दास जलोटा के स्वर में इस भक्ति रचना को।

पुरुषोत्तम दास जलोटा के स्वर में इस रचना के साथ ही कार्यक्रम सबरस अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। इस वक्त शाम के ठीक 6:15 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान, भाग संख्या 188। गायन स्वर हैं कविता कृष्णमूर्ति के, संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान, भाग संख्या 188। गायन स्वर था कविता कृष्णमूर्ति का, संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। श्री रामचरित मानस गान का अगला भाग आप सुन सकते हैं कल इसी वक्त इसी चैनल यानी FM मीरा पर, FM 102.9 MHz पर। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। प्रस्तुत है आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, अब से कुछ ही समय पश्चात यानी शाम 7 बजे किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती किसानी। इस कार्यक्रम में आज चर्चा की जाएगी संयुक्त परिवार जिम्मेदारी सबकी, और साथ ही जानकारी दी जाएगी किसान भाइयों को कृषि रसायनों के उपयोग में बढ़ते सावधानी विषय पर, और एक भेंट वार्ता भी आपको सुनवाई जाएगी संयुक्त परिवार पर विचार के बारे में।

संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही कलाकार से आप सुन सकते हैं शाम 7:30 पर। आज ये कार्यक्रम आधारित होगा मशहूर पार्श्व गायक पंकज उधास पर। राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत आप सुन सकते हैं रात 8 बजे और सुगम संगीत के कार्यक्रम का आनंद आप लीजिएगा रात 8:15 पर। हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों में शाम 6:30 पर आप सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या आप सुन सकते हैं रात 8:45 पर और अंग्रेजी में समाचार आप सुनिएगा रात 9 बजे। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 9:15 से रात 10 बजे तक। ये थी जानकारी हमारी आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.9 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। समाचारों में पहले आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।

0: मुख्य समाचार। राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में बनाया जाएगा। इस क्लस्टर से हर साल 6 करोड़ चिप का निर्माण होगा। राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत कल से मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प और मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित होगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में बनाया जाएगा। इस क्लस्टर में 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यहां से हर साल 6 करोड़ चिप्स का निर्माण किया जा सकेगा। साथ ही करीब 2500 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका शिलान्यास किया। इसके साथ ही 400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं में भिवाड़ी में एलसीना इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, 34 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और खैरथल तिजारा के कई विकास कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है और पिछले 2 सालों में 35 नई नीतियां लागू की गई हैं। उन्होंने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान को जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना और यमुना जल समझौते के काम में तेजी आने की भी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि देश में सेमीकंडक्टर की 12 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 12 साल में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संसाधनों के संयमित उपयोग से ही ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा। ईंधन बचत का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री खुद इलेक्ट्रिक वाहन से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की बचत एक सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी वाहनों के सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग के निर्देश जारी किए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में अग्रणी है और आने वाले समय में ऊर्जा प्रदाता राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू की गई है।
2: राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। हमारे राज्य में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता उपलब्ध है। अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है और राजस्थान सौर परियोजना स्थापित में देश में अग्रणी है। हमारी सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। इसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट क्षमता स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
0: राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत कल से मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। 14 जून तक चलने वाले इस चरण के लिए प्रगणक घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इसके लिए प्रदेश में

0: विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से प्रगणकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एंट्री करने, परिवारों की सही जानकारी दर्ज करने और सर्वे के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का अभ्यास कराया गया। वहीं स्वगणना का विकल्प का आज आखिरी दिन है। स्वगणना के जरिए लोगों ने 1 मई से खुद अपने मकान और परिसंपत्तियों से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की। जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC में 23 से 25 मई तक आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को स्थगित कर दिया है। कृषि आयुक्त ने आज इस बारे में एक आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित करने वाली थी, जिसके लिए पिछले 2 माह से व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ बातचीत के दौरान चुनौतीपूर्ण समय में UAE की भूमिका की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जून में होने वाली अगली परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5-15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि NTA में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि CBI नीट पेपर लीक मामले की तह तक जाएगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि स्वास्थ्य केवल व्यक्ति का निजी विषय नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र से जुड़ा मसला है। श्री शेखावत आज बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में एक अस्पताल के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बांसवाड़ा और कुशलगढ़ जैसे आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में लंबे समय तक संसाधनों की कमी रही, जिसके कारण स्थानीय लोगों को उपचार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, लेकिन केंद्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के बाद

0: रिवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सरिस्का प्रशासन ने कैनाइन डिस्टेंपर नामक खतरनाक वायरस के खतरे को देखते हुए अपनी निगरानी टीमों को सक्रिय कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित कुत्तों के माध्यम से बाघों में फैलता है। वर्तमान में सरिस्का में 52 बाघ हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन अब आसपास के क्षेत्रों में कुत्तों के टीकाकरण और बाघों की विशेष निगरानी पर जोर दे रहा है। भरतपुर के मुक्केबाज यश कुमार ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। यश ने 33 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को 4-1 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की। यश कुमार जूनियर वर्ग में इस चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाला राजस्थान के पहले मुक्केबाज बन गए हैं। उनकी इस सफलता पर खेल जगत में खुशी की लहर है। और अब मौसम। प्रदेश के कई भागों में पिछले 24 घंटे में आंधी और बारिश की गतिविधियों से ज्यादातर स्थानों पर तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इससे आमजन को भीषण गर्मी से मामूली राहत मिली है। हालांकि अभी भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दूसरी ओर आज दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर और जयपुर जिले में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार कल से फिर तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। सीमावर्ती जिलों के लिए विभाग ने तेज गर्मी और लू का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में बनाया जाएगा। इस क्लस्टर से हर साल 6 करोड़ चिप का निर्माण होगा। राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत कल से मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प। और मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना के दौरे की। हाल ही में श्री मीना ने जिले के भुसावर क्षेत्र के झरोटी गांव में आयोजित पद दंगल कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में लोक गायन और लोक नाट्य को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये हमारी संस्कृति की पहचान है, इसकी जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर जोर दिया। डॉक्टर मीणा ने इस दौरे में दलपुरा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई। उन्होंने जनसुनवाई भी की। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क और अन्य समस्याओं से कृषि मंत्री को अवगत कराया। कृषि मंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए बने कक्षा कक्षों का लोकार्पण किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील की। उन्होंने लोगों से राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और किसानों से जैविक खेती अपनाने की भी अपील की। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक सांसद संजना जाटव की अध्यक्षता में भरतपुर में आयोजित हुई। इसमें केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान सांसद ने कहा कि सरकार की योजनाओं का पारदर्शिता से समयबद्ध क्रियान्वयन कर आम लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लोगों का चयन कर गुणवत्तापूर्ण आवास बनवाने को कहा। साथ ही राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत पिछले दिनों एक दिन के भरतपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने अपना घर आश्रम में 4 नए भवनों का लोकार्पण किया, साथ ही बालिका सदन का भूमि पूजन किया और राष्ट्रीय आश्रम तथा गौशाला की कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इस मौके पर श्री गहलोत ने कहा कि दीन दुखियों की सेवा करना ही सच्ची मानवता है। उन्होंने सेवा और संस्कारों पर जोर

0: देते हुए कहा कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, यही हमारी संस्कृति है, इसे बनाए रखना नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से शैक्षिक सुधारों के लिए स्वयं प्रेरित होकर ब्लॉक वार कार्य योजना बनाकर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। जिला निष्पादन समिति की बैठक में उन्होंने मिड डे मील योजना की सामग्री की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करवाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जिले में 428 कन्याओं के विवाह पर लगभग 1,96,00,000 रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। कन्याओं के विवाह के लिए दी गई सहायता राशि से गरीब परिवारों को आर्थिक संबल मिला है। जिले में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता फैलाई गई। इस दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में किशोरियों और महिलाओं को जानकारी दी गई। 8वीं पोषण पखवाड़े का आयोजन भी पिछले दिनों जिले में हुआ। इस दौरान बच्चों और महिलाओं में स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाई गई। विभिन्न स्थानों पर संगोष्ठियां आयोजित कर मातृ और शिशु पोषण के महत्व और एनीमिया से संबंधित जानकारियां दी गई। इसके अलावा मोटे अनाज और स्थानीय खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी लगाकर पोषण के महत्व से अवगत कराया गया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। इस मौके पर भरतपुर के श्री शमशानेश्वर महादेव मंदिर में विशेष धार्मिक कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान भजन कीर्तन सहित अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सहित आसपास के जलीय क्षेत्र में बीते दिनों सारस गणना की गई। मचानों पर बैठकर उद्यान के कार्मिकों, पर्यावरणविद, गाइड और पक्षी प्रेमियों ने इस काम में शिरकत की। इसके साथ ही भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी माए बनायो जावेला। हर साल 6 करोड़ चिप बनेला। राज्य में जनगणना 2027 रा तेतकाल मकानारी लिस्ट बनावन रो काम शुरू करियो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ऊर्जा री बचत ना इनरा उत्पादन रो सब सस्तो और असरदार विकल्प बतायो। और मेडिकल कॉलेज में दाखिला सारू ली जावन वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून ओजू हैला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी माए बनायो चावेला। वो क्लस्टर बनावन रा काम माए करीब 1,200 करोड़ रुपया रो निवेश फैला। ई कारखाना माए हर साल 6 करोड़ चिप बनाई जा सकेला। इस आगे करीब 2,500 लोगों ने नौकरी धंधा रा मौका मिलेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज वर्चुअल तरीका इनरा काम री शुरुआत कीनी। वह ईसा गई 400 करोड़ रुपये भत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनाओं रा काम री नींव रखी और पूरा अभियान काम रो उद्घाटन कीनो। इस मौके मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार प्रदेश माए निवेश ने बढ़ावो देवन सारू लाडला 2 साल माए 35 नीतियां बनाई। वह दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ने जोड़बा वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना और यमुना नदी रा पानी जुड़िया करार रातेत काम माए तेजी लावन री जानकारी दीनी। श्री शर्मा बतायो कि सरकार नौजवाना सारू पंचायत लेवल माथे अटल ज्ञान केंद्र खोलन माथे ध्यान दे रही है। इस मौके केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो कि देश में सेमीकंडक्टर बनावन रा 12 कारखाना लगाई चिया है और लाडला 12 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हल्का में 6 गुना बढ़ोतरी सागे। अब कुल उत्पादन 13,00,000 करोड़ रुपया लेवल के न पोग रियो है।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13,00,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है।

0: आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ऊर्जा री बचत ना इंडरा उत्पादन रो सबो सस्तो और असरदार विकल्प बतायो है। वह आज जयपुर माए राखी जिया राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव माए बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि पेट्रोल डीजल री बचत करण री सगला री जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू लाडला दिना करी जी अपील पछे मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार सरकारी गाड़ियां सीमित तादाद में काम लेवण जुड़िया निर्देश जारी कीना है। वह कहो कि राजस्थान सूरज री रोशनी बिजली बनावण रा हलका माए देश माए अगाड़ी है। मुख्यमंत्री कहो कि अक्षय ऊर्जा ने बधाओ देवण सारू राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू करी जी है। वह कहो कि सरकार साल 2030 ताई 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा रो लेवल हासिल करण न ध्यान रखता थका काम कर रही है।
2: राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। हमारे राज्य में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता उपलब्ध है। अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है और राजस्थान सौर परियोजना स्थापित में देश में अग्रणी है। हमारी सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। इसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट क्षमता स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
1: राज्य में जनगणना 2027 रा पहला दौर रातेत काल मकानारी लिस्ट बनावण रो काम शुरू करियो चावेला। 14 जून ताई चालन वाला इन काम सारू प्रगणक घर घर जार जानकारी भेड़ी करेला। इन सारू प्रदेश माए नैरी नैरी ठोणा सिखावण शिविरां रे जरिए प्रगणका ने जरूरी सिखावण दीरी जी। माने मोबाइल ऐप रे जरिए जानकारियां रो इंद्राज करण, परिवारां री जानकारी दर्ज करण और सर्वे रे दौरान राखी जावण वाली सावधानियां रे बारा माए अभ्यास कराई चियो। इन बीच स्वगणना करण रो आज आखिरी दिन है। स्वगणना रे जरिए लोग खुद 1 मई हमारा मकान और परिसंपत्तियां जुड़ी जानकारी ऑनलाइन तरीका दर्ज करा रहा है। जयपुर माए 23-25 मई ताई राखी जावन वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 टाल दीरी जी है। कृषि आयुक्त रिओरू आज इन 12 मई हुक्म जारी करी जिया। ध्यान जोग है कि इन कार्यक्रम सारू लाडला 2 महीनाओं तैयारियां करी जा रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत है AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात रा अबुधाबी माए वठेरा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सागे मुलाकात कीनी। इन दौरान ऊर्जा सहयोग और दुनिया देशा बीच कारोबार जुड़ी चर्चा करी ची। प्रधानमंत्री मोदी यूएई माथे हाल ही माए करी जी हमला री कड़ी निंदा कीनी। वह मुश्किल वगत माए यूएई रा काम री सराहना करता थका यूएई सारू भारत री हिमायत री पुष्टि कीनी। श्री मोदी कहो कि तनातनी रा मौजूदा दौर माए बातचीत और कूटनीति आगे चालन रो गेलो है।
3: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: देश रा मेडिकल कॉलेजा माए दाखिला सारू नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून ने उजुली जावेला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली माए नीट यूजी परीक्षा रे बारा माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी।

0: टीमी वह बतायो कि इन सारू 14 जून ताई एडमिशन कार्ड जारी कर दिया जावेला। श्री प्रधान कहो कि 21 जून न उजू ली जावन वाली ई परीक्षा री कोई फीस नहीं ली जावेला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहो कि हाल ताई ओएमआर शीट माथे ली जा रही नीट परीक्षा आवता साल कंप्यूटर जरिए ली जावेला।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: शिक्षा मंत्री कहो कि विद्यार्थियों ने परीक्षा देवन सारू पसंद रो शहर चुनवा रो मौको दियो जावेला। मंत्री कहो कि सीबीआई नीट पेपर लीक मामला री पूरी जांच करेला। ध्यान जोग है कि 3 मई ने भी नीट परीक्षा 2026 पेपर लीक वेवन री शंका पाछे रद्द करती रिची ही। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि स्वास्थ्य केवल इंसान रो निजी मुद्दों नहीं है बल्कि पूरा समाज और देश हूं जुड़ियो है। वे आज बांसवाड़ा जिला रा कुशलगढ़ में एक अस्पताल रा उद्घाटन रे मौके बोल रहा है। केंद्रीय मंत्री आयुष्मान भारत योजना रो जिक्र करता थका कहो कि इन तहत 5 लाख रुपया ताई रा खर्च रो इलाज मुफ्त करावन रो सुबी तो दियो चावे है। मध्य प्रदेश रा कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघां री मौत रा मामला पाछे अलवर जिला रा सरिस्का टाइगर रिजर्व में सावचेती बधा दीरीची है। प्रशासन कैनाइन डिस्टेम्पर नाम रा खतरनाक वायरस रा खतरा न ध्यान रखता थका निगरानी टीमा ने काम माथे लगा दीनी है। जानकारा ने मुजब ओ संक्रमण संक्रमित कुत्ता रे जरिए बाघां माए फैले है। सरिस्का टाइगर रिजर्व माए 52 बाघ है जाने संक्रमण बचावन सारू आरएसआर रा कुत्ता रे टीका लगावन माथे जोर दियो चारियो है। भरतपुर रा मुक्केबाज यश कुमार उज्बेकिस्तान रा ताशकंद माए राखी जी एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप माए सोना रो तमगो जीतियो है। वह 33 किलोग्राम भार वर्ग रा फाइनल मुकाबला में कजाकिस्तान रा खिलाड़ी ने 4-1 हराया। यश कुमार ई चैंपियनशिप रा जूनियर वर्ग में सोना रो तमगो जीतने वाला राजस्थान रा पहला मुक्केबाज बन गया है। अरबे मौसम प्रदेश रा कई हल्का माए लाड़ला 24 घंटा माए आंधी और बारिश फेवन रे कारण पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो। इनु गर्मियों थोड़ी सत्ता मिली। हालांकि हाल ही कई छोड़ा ऊंचो तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करियो जा रियो है। दूजिकानी आज दौसा करौली सवाई माधोपुर और जयपुर जिला माए कठे कठे जोरदार बायरो बजन सागे हल्की बिरखा भी। मौसम विभाग रे मुजब काल ओजू पारो चढ़बारा आसार है। महकमो सरहदी जिला सारू तेज गर्मी और लू बाबत चेतायो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नंबर ओजू सुन ले राव सा 1800-117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में बनायो जावेला। हर साल 6 करोड़ चिप बनाई जावेला। प्रदेश में जनगणना 2027 राते कालू मकाना री लिस्ट बनावन रो काम करियो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ऊर्जा री बचत ने इनरा उत्पादन रो सब सस्तो और असरदार विकल्प बतायो। और मेडिकल कॉलेज में दाखिला सारू ली जावन वाली नीट UG 2026 परीक्षा 21 जून ने ओजू भेला। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।

0: 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। इस वक्त शाम के ठीक 7 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती किसानी।
1: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।

0: खेती किसानी।
1: खेती किसानी कार्यक्रम सुना वाला सब किसान भाइयों ने मारी छोटू भैरी और घना घना राम राम सा। किसान भैया जसन की आप जाना हाँ कि गर्मी को मौसम चल रहा है और अन्य तेज गर्मी में अपने खुद के स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है, अपने जो जीव जानवर पाल रखा है वह को भी ध्यान रखना है, साथ ही अपने खेती बाड़ी को भी ध्यान रखना है साहब। तो अन्य मौसम में सावधानी बरता, सुरक्षित रहवा, तो देखो यो मौसम भी अपना अच्छी तरह निकाल सका साहब। आसानी अपने कुछ बातें खेती बाड़ी में भी ध्यान रखनी छावे है, जैसा कि कृषि रसायन के छिड़काव के समय सावधानी रखनी छावे साहब। बहुत सी बार अपा देखा हाँ, अखबार में भी पढ़ा हाँ कि रसायन छिड़कते वक्त कोई बेहोश वेगियो या भी रसायन छिड़कते वक्त की मौत वेगी, कहाँ की वह थोड़ी सी सुरक्षा ध्यान नहीं रखे साहब। हमेशा अपने छिड़काव करता समय मास्क पहनना है, दस्ताना पहनना है, चश्मा पहनना है और पूरा शरीर पर ढकवा वाला कपड़ा पहनना है, यानी कि जो अपने पूर्व किट आवे है वे को प्रयोग करना है साहब। साथ ही अपने ध्यान रखना है कि अपा हवा की विपरीत दिशा में छिड़काव नहीं करना साहब। और बात है कि पशुओं भी रसायन ने दूर रखना छावे और बच्चाओं भी अपने दूर रखना छावे साहब। दवा के डब्बा पर जो भी अपने निर्देश दिया गया है वे को अवश्य पालन करा सा। और बहुत सी बार देखो दवा भी बच जावे है तो इन्हें अपा बिल्कुल पैक करना रखना साइड में या ख़त्म हो जावे तो डब्बा ने नष्ट करना या इन्हें गाड़ना सा। छिड़काव के बाद अपा अच्छी तरह नाला कपड़ा वपड़ा भी धोला तो देखो कुछ सुरक्षा ही अपने ये बचा सके सा। और रसायन छिड़कना भी जरूरी है तो ये बातों को जरूर अपने ध्यान रखना छावे सा। ध्यान रखा अपनी मनोरंजन को सुना सीमा मिश्रा की आवाज़ में यो प्यारो सो लोकगीत।

हम इस की आवाज़ में प्यारो सो लोक गीत सुनियो सा। और किसान भैया देखो, आज अपन है विश्व परिवार दिवस भी, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी इन्हें कहे हैं। और 15 मई 2026 ने यो हमेशा मनाया जावे ऐसा। तो संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी सबकी है। और इस पर अभी थोड़ी सी बात करा कि परिवार को कई महत्व है। किसान भाई तो अच्छी तरह जाने हैं कि अपने खेती बाड़ी का काम में भी परिवार की जरूरत पड़े है, घर का काम में भी जरूरत पड़े है। तो परिवार को महत्व अपने लिए बहुत ऐसा। परिवार में अगर एकता वे तो भी परिवार मजबूत बने रहे। और केवे के परिवार में एकता में शक्ति है सा। और एक 11 वे है, यो भी

0: और देखो बहुत सी बार आप देखा हाँ कि वाकई विकास में वाकई जुड़े तक का जो मुद्दा है वाकई जागरूकता बढ़ावा के लिए अपना दिवस मनाया जाए वैसा, और परिवार के बीच में प्यार वेनो छावे, भरोसा वेनो छावे, और साथ में मजबूत करवा को यो संदेश देवे है अपने अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस सा। और किसान भैया अपा जाना गांव में अबार भी संयुक्त तो परिवार देखे जावे है, और अपा देखा कि बाप दादा छोरा छोरी और पोता पोती भी साथ में रहे हैं, और अपने घर परिवार में खेती बाड़ी के साथ साथ अपने पशुपालन है, यानी कि जितना आदमी वे वतरे कम पड़े सा काम अतरो बुढ़े तो को रहे है, कोई खेत जा रहे है, कोई गाय को दूध निकाल रहे है, कोई बाजार में मंडी में जा रहे है, तो अपना ज्वाइंट परिवार वे या संयुक्त तो परिवार वे ना तो विकी एक रौनक ही अलग है। घर परिवार में सब साथ में बैठी नपा खानो जीमा या बातचीत करा या दुख दर्द बांटा तो अपने घणो बढ़िया लगे सा। और जो संयुक्त परिवार की महत्वता है या आपा जीवन में जाना हासा आसानी अपा एक बारे में भेंट वार्ता कुछ की दी है विपे आधारित संयुक्त परिवार पर विचार जाने है, तो मिल बैठ सुना ये विचार। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, क्या
1: बिल्कुल।
0: कहना चाहेंगे आप इस दिवस के उपलक्ष्य में?
2: नमस्कार, अपना परिचय दीजिए सर।
3: रमेश लड्डा।
2: कहाँ निवास करते सर?
3: मैं कबीर कॉलोनी में रहता हूँ, ऐसे सुपर स्टोर है।
2: अच्छा।
3: जिसका नाम भी हमने परिवार रखा, और परिवार का ये महत्व है साहब, परिवार में आदमी निश्चिंत होकर रह सकता है, कहीं कोई परेशानी आती नहीं है, और परेशानी आती है तो भी परिवार सम्मिलित सामूहिक रूप से उसको निर्वहन कर सकता है, आदमी कहीं बेखौफ होके आ जा सकता है, और परिवार में रहने का एक अपना अलग ही आनंद है।
2: कौन कौन होंगे अभी आपके परिवार में साहब?
3: हमारे परिवार में छोटा भाई है, भाई का लड़का है, पत्नी है, बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, सब है परिवार में, हम सब साथ रहते हैं। कोरोना काल में तो हम पूरा परिवार, जो हमारे मदर, बड़े भाई, छोटे भाई, सब हम लगभग 19 जने एक साथ रहे थे, और वो यादगार है, अपने जीवन का सबसे बढ़िया टाइम था, पूरा परिवार एक साथ था।
2: मतलब जब मुसीबत के समय कोरोना काल था, जब पूरा परिवार साथ था, तो एक अलग ही मतलब मुसीबत में भी एक खुशी थी कि भाई हम साथ में हैं।
3: बिल्कुल, बहुत बड़ी खुशी थी कि पूरा परिवार एकदम एक साथ है, सब मिल मिल के काम करते थे, रोज एक साथ खाना, एक साथ खेलना, सब अच्छा था।
2: आप किस तरह का अनुभव करते हैं ज्वाइंट फैमिली में रहकर?
3: मैं तो सबको राय दूंगा कि जहाँ तक हो सके अपने ज्वाइंट परिवार में ही रहे, परिवार के साथ रहे, परिवार से बढ़ के तो कोई सुख हो ही नहीं सकता।
4: मैं अशोक कुमार सोनी, प्रताप नगर निवासी, चित्तौड़गढ़ का हूँ।
0: और जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, क्या कहना चाहेंगे आप इस दिवस के उपलक्ष्य में?
4: बस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि ज्वाइंट परिवार जो साथ में रहते हैं, सब मिलके माँ बाप के साथ में, भाई बहनों के साथ में, तो इसी तरह मिलता रहे, उसी तरह मैं एक ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं मेरी माँ के साथ रहता हूँ, पिता भी थे मेरे, पिता एक्सीडेंटल कुछ सालों पहले डेथ हो गई, माँ है, हम भाई बहन हम सब साथ रहते हैं।
0: क्या उम्र होगी माता जी की?
4: मम्मी की 80 साल की उम्र है।
0: किस तरह का वातावरण रहता है घर में जब बड़े बुजुर्ग साथ में रहते हैं?
4: भक्ति में वातावरण रहता है, आशीर्वाद वातावरण रहता है, बहुत अच्छा वातावरण रहता है, पुरानी जानकारियों का, माँ की वजह से पुरानी जानकारी हमको सबको मिलती रहती है, सामाजिक जानकारी भी हमको माँ के माध्यम से मिलती रहती है।
0: और जैसा कि हम परिवार में रहते हैं तो बहुत सी बार कोई काम होता है तो उसके भी फायदे मिलते हैं ज्वाइंट फैमिली में, क्या कहना चाहिए?
4: बहुत बहुत फायदे मिलते हैं, कभी बीमारी सीमारी आ गई, ठीक है ना, तो माँ का आशीर्वाद के साथ साथ एक समय भी मिल जाता है ज्वाइंट फैमिली में, एक की जगह पांच जने परिवार के खड़े हो जाते हैं, तो एक संबल मिलता है, घर में कोई शादी ब्याह अच्छा प्रोग्राम आया, घर के पांच सदस्य खड़े हो जाते हैं, तो उसमें भी एक संबल मिलता है कि अपन पांच जने मिलकर इस काम को कर लेंगे, तो ज्वाइंट फैमिली का बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। खर्चे में भी काफी फायदा है, यूं समझ लो आप, आपका सिंगल जिस परिवार में परिवार का एक रुपया खर्च हो रहा है, तो ज्वाइंट फैमिली में वही 75 पैसा 50 पैसे खर्च होता है, और काम वो सको वैसा होता है, बढ़िया होता है, रौनक आती है, परिवार के सदस्य साथ खड़े रहते हैं। तो इस दिवस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चों को मेरी तरह ज्वाइंट फैमिली के साथ रहना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद नित्य अपन को मिलता है, और हम सब सब साथ मिलकर चले, मतलब दुख में सुख में, यही मेरी कामना, मैं यही चाहता हूँ।
5: नाम बसंती लाल वैद।
0: कहाँ विरासत? विनायक नगर में।
5: विनायक नगर चापीखेड़ा रोड।
0: अच्छा अच्छा, चित्तौड़गढ़ के निवासी हैं
5: जी।
0: क्या उम्र होगी आपकी?
5: अभी ये 79।
0: 79 है, और आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है
5: जी,
0: तो परिवार में कौन कौन सदस्य हैं अभी?
5: परिवार में पूरा परिवार है मेरा, इसमें मैं हूँ, मिसेज है, बच्चे है,

0: मिसेज है, उनके दोनों बच्चे हैं, दोनों पोता, दो पोते दो पोती हैं। अभी तो मेरे तीनों बच्ची भी आई हुई है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: छुट्टियों में तो सब परिवार हम एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं, और आजकल संयुक्त परिवार न के बराबर हो रहा, कटते जा रहे हैं
1: जी, जी, जी।
0: और हमारा परिवार ऐसा है कि ज्वाइंट फैमिली है, और ज्वाइंट फैमिली में बातें करते हैं तो भी एक साथ 10 जने बैठ के बात करते हैं, दुख दर्द की बातें जो भी है, खाने पीने की जो भी है, जो अच्छे से अच्छे काम ज्वाइंट फैमिली में होता है, जो हो रहा है।
1: और क्या क्या फायदे होते हैं
0: ज्वाइंट फैमिली में? कोई भी चीज, कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो भी ज्वाइंट फैमिली में एकदम सब साथ होके इलाज करा सकते हैं। ज्वाइंट फैमिली नहीं हो तो पड़ोसी आए या दोस्त लोग आए तो उसमें टाइम लगता है। ज्वाइंट फैमिली में खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कोई चीज कोई दूसरा खा रहा है तो कोई तीसरा खा रहा है, तो उससे क्या है कि आज का अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो ज्वाइंट फैमिली से कोई कहते हैं कि ये खाओ ये पियो ये इससे फ़ायदा होगा, तो ज्वाइंट फैमिली से बहुत फ़ायदा है, नुकसान नहीं है।
1: जी जी जी।
0: और ज्वाइंट फैमिली आजकल दिन ब दिन अलग अलग होती जा रही है, और जहाँ बहू और सास एक है वहाँ ज्वाइंट फैमिली बराबर चलती रहेगी, और जहाँ बहू और उनकी सास की बीमारी आपस में लड़ झगड़ है तो वो ज्वाइंट फैमिली नहीं होती, और फिर आए दिन अलग अलग होने की संभावना रहती है इसमें।
1: आप कैसा अनुभव कर रहे हैं सर ज्वाइंट फैमिली?
0: ज्वाइंट फैमिली में बहुत खुश हूँ मैं, और मैं तो यही निवेदन करता हूँ सबसे कि ज्वाइंट फैमिली रह के ही और एक छत्र शासन एक छत के नीचे रह के और काम करे।
2: सर मैं यशवंत बफना, मैं कुंभनगर रहता हूँ।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, परिवार में आपके कौन कौन सदस्य हैं सर?
2: परिवार में पत्नी बच्चे माँ हैं, हम सब माँ के साथ ही रहते हैं, एक भाई हैं उनका परिवार है।
1: कैसा लगता है सर माँ परिवार के साथ में रहना, बड़े बुजुर्गों के साथ में रहना?
2: सर जिंदगी का सुकून तो उनके साथ ही है, माँ के साथ थोड़ा समय निकलता है, पहले पिताजी भी थे, समय निकलता है, दिन भर के तनाव दूर हो जाते हैं, शाम को मिलते हैं तो, और सुबह तो आशीर्वाद लेते ही हैं बस।
1: क्या क्या फायदे हैं ज्वाइंट परिवार के?
2: फायदे आर्थिक फायदों को तो अलग अलग रखे हैं, तो एक जो मानसिक फायदा है जिसको कहते हैं अपन मेंटल स्ट्रेंथ, वो अद्भुत है, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा परिवार के अलावा। निस्वार्थ भाव से आप परिवार के साथ रहें, प्रेम से रहें, दुनिया में सारी खुशी वहीं मिल जाएगी।
1: क्या उम्र होगी अभी माता जी की?
2: वो 75+।
1: तो आपके अनुभव बताइए उनके साथ रहने में और परिवार के साथ कैसे क्या रहे?
2: माता जी का तो आशीर्वाद अभी निरंतर मिलता ही है, क्या अनुभव दूँ सर, वो तो अद्भुत है, उसको तो बयान नहीं कर सकते।
1: अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं परिवार के विघटन हो रहे हैं, क्या नुकसान उनके जो एकल प्रवृत्ति में रहते हैं?
2: एकल प्रवृत्ति में बस ठीक है, थोड़े दिन खुश रहिए, दीर्घकालीन जो जीवन होता है सामाजिक जीवन, उसमें तो परिवार ही सर्वोपरि है, फैमिली फर्स्ट, आपके भाई हों बहन हों पत्नी हों बच्चे हों माता हों पिता हों, बस यही दुनिया है, आनंद तो वही।
3: राजेश जैन।
1: कहाँ रहते हैं आप?
3: गांधीनगर सेक्टर 1।
1: परिवार में कौन कौन है आपके? अभी
3: मम्मी पापा भाई साहब भाभी जी
1: और बच्चे बच्चे भी होंगे।
3: बच्चे बच्चे भी,
1: यानी कि तीन पीढ़ी साथ में रहती है।
3: तीन पीढ़ी साथ में।
1: क्या महत्व होता है अगर सब जने साथ में रहते हैं, क्या फायदे होते हैं?
3: फायदे तो ये होते हैं कि मतलब कोई परेशानी का काम नहीं होता है, और बीमारी वमारी में इनमें कोई भी हो तो सपोर्ट करते हैं बड़े बड़े,
1: और सुरक्षा के बारे में तो ही है, साथ ही हम देखते हैं कि आर्थिक सहयोग भी मिलता ही होगा।
3: आर्थिक का कोई तनाव नहीं रहता है, मतलब मानसिक तनाव कुछ नहीं रहता है, साथ में रहने से ही फायदा है।
1: और जैसे आप कैसे अनुभव करते हैं कि आप तो मम्मी पापा के साथ में रहते हैं, आप बिजनेस भी करते होंगे तो भी आपको सपोर्ट मिलता होगा?
3: पूरा पूरा सपोर्ट मिलता है मम्मी पापा का, मतलब बिजनेस में मतलब पूरा आपको कोई इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब साथ में रहिए, मिलजुल के रहिए और मस्त रहिए, घूमने फिरने जाइए, खाना वाना घर पे खाइए।
1: लगे है कि अगर जॉइंट फैमिली होगी तो खुशहाली हमारे घर में होगी।
3: होगी बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वहाँ सा किसान भैया देखो भेंट वार्ता पर आधारित संयुक्त परिवार पे आप विचार जानिया सा, और अब एक कार्यक्रम में आगे बढ़ा, सुना प्यारो सो लोकगीत भारती की आवाज़ में।

वासा किसान भाई, देखो भारती की आवाज में यो प्यारो सो लोग सुनियो सा। और अबे निम्बाड़ा मंडी का आपने भाव बता दा। निम्बाड़ा मंडी का भाव रहा है गेहूं का रहा है 2400-2800 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का पीली का रहा है 1600-2045 रुपया प्रति क्विंटल। आसानी अपने ज्वार का भाव रहा है 1481 रुपया प्रति क्विंटल। और जो का भाव रहा है 2250-2501 रुपया प्रति क्विंटल। चना का भाव रहा है 4700-5300 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों का भाव रहा है 6380-7000 रुपया प्रति क्विंटल। सोयाबीन का रहा है 5500-7240 रुपया प्रति क्विंटल। आसानी अपने मूंगफली का भाव रहा है 6400-8600 रुपया प्रति क्विंटल। किनोवा का भाव रहा है 5100-5251 रुपया प्रति क्विंटल। मेथी का 5300-7345 रुपया प्रति क्विंटल। और लहसुन का भाव रहा है 5000-15900 रुपया प्रति क्विंटल। आसानी अपने चिया का भाव रहा है 16000-20040 रुपया प्रति क्विंटल। इसब गोल का रहा है 9500-10200 रुपया प्रति क्विंटल। अलसी का भाव रहा है 9400-9499 रुपया प्रति क्विंटल। आसानी मूंग का भाव रहा है 6000 रुपया। तुलसी का भाव रहा है 14010 रुपया। धनिया का भाव रहा है 10500-10700 रुपया प्रति क्विंटल। और उड़द का भाव रहा है अपने 5900-6700 रुपया प्रति क्विंटल सा। और देखो चलता चलता आपने मौसम की बात भी बता दा। मौसम अधिकतम तापमान आज चित्तौड़गढ़ को रिवा है 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रिवा है 22 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता रही है अपने 54% और हवा की रफ्तार रही है 21 किलोमीटर प्रति घंटा सा। आसानी अपने काल का मौसम का अनुमान है। अधिकतम तापमान रिवा की संभावना है 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रिवा की संभावना है 20 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता रह सके अपने 70% और हवा की रफ्तार रिवा की संभावना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा सा। मौसम आज भी सामान्यतः शुष्क रियो है, काले भी शुष्क रेवा की संभावना है सा। और अब एक कार्यक्रम समाप्त करा कि आपके छोटू भाई ने दो आ गया घना घना राम राम सा।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती किसानी FM 102.9 MHz पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। इस वक्त शाम के ठीक 7:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का ये कार्यक्रम होगा मशहूर पार्श्व गायक पंकज उदास पर आधारित।

नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या साथियों। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल और मैं हूं आपका अपना रेडियो वाला दोस्त महेंद्र खेरारू। दोस्तों, 80 और 90 के दशक की फिल्म संगीत और गजलों से मेरा हमेशा से एक खास और गहरा लगाव रहा है। जब भी इस सुनहरे दौर के सुकून भरे संगीत की बात होती है तो एक नाम जहन में सबसे पहले उभरता है और वो नाम है मखमली आवाज के जादूगर पद्मश्री पंकज उदास जी का। पंकज जी ने हिंदुस्तानी संगीत में गजल को उस जटिल और परंपरा और महफिलों के दायरे से बाहर निकालकर आम आदमी

तक पहुंचाया। उन्होंने गली मोहल्लों और छोटी जगह के लोगों को गजल के असली सुकून से रूबरू करवाया। आज का हमारा ये 30 मिनट का जो सफ़र है ना, इसी महान फनकार की यादों और उनके सदाबहार फिल्मी नगमों के नाम हैं। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं 1991 में आई फिल्म साजन के इस बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय गीत से।

आपके, जिए तो जिए कैसे बिना आपके। साजन फिल्म का ये गीत आज भी जब बजता है तो दिल के तार छेड़ देता है। दोस्तों, 17 मई 1951 को गुजरात के जेतपुर में एक हिंदू जमींदार परिवार में जन्मे पंकज उदास जी का सफर इतना आसान नहीं था। उनके दादा भावनगर राज्य के राजस्व मंत्री थे और पिता केशुभाई उदास एक सरकारी कर्मचारी। भाइयों में मनहर उदास और निर्मल उदास का भी नाम संगीत की दुनिया में रोशन है। पंकज जी ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई की और नवरंग नागरपुरकर जी से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा। शुरुआती दौर में उन्होंने फिल्म कामना के लिए एक गीत गाया, लेकिन फिल्म उतनी चली नहीं और फ्लॉप रही और उन्हें कोई खास पहचान भी नहीं मिली। एक वक्त तो ऐसा आया जब संघर्ष से निराश होकर उन्होंने विदेश जाकर बसने का फैसला कर लिया, लेकिन उनके भाई मनहर उदास जी ने उन्हें समझाया और फिर आया 1986 का वो साल, फिल्म नाम का वो गीत, जिसने ना सिर्फ राज कपूर साहब को रुला दिया बल्कि पंकज उदास जी को भी हर घर की

आवाज बना दिया। तो आइए सुनते हैं उसी गीत को, देश प्रदेश के दर्द को बयां करती ये अमर गजल पंकज उदास जी की आवाज में।

माफी आई के बाद पंकज जी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये गीत सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, पंकज जी जितने भावुक और सुकून भरे गीत गाते थे, उनकी अपनी असल जिंदगी भी, जिंदगी की प्रेम कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। 70 के दशक में एक पड़ोसी के जरिए उनकी मुलाकात फरीदा से हुई, जो कि एक एयर होस्टेस थी और एक पारंपरिक पारसी परिवार से ताल्लुक रखती थी। धर्म अलग होने के कारण दोनों को काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उनके प्यार के आगे परिवार को झुकना पड़ा और 11 फरवरी 1982 को दोनों ने शादी रचा ली। फरीदा और पंकज जी की दो प्यारी बेटियां हैं, रेवा और नायाब। उनकी इसी सच्ची मोहब्बत की झलक उनके गाए रोमांटिक गीतों में भी बखूबी सुनाई देती है। तो आइए सुनते हैं 1988 की फिल्म दयावान का वो गीत जो कि इसका जीता जागता उदाहरण है।

दोस्तों आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ पर आप सुन रहे हैं पंकज उदास जी पर आधारित हमारी ये विशेष पेशकश आपके दोस्त महेंद्र खेरारू के साथ। संगीत की दुनिया में पंकज जी के योगदान को शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं है। अपने करियर में उन्होंने 60 से अधिक एल्बम जारी किए। उनकी इस अथाह तपस्या के लिए उन्हें कई बड़े सम्मान मिले। 1990 में उन्हें चिट्ठी आई है के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्मफेयर मिला और 2026 में उन्हें गजल गायन और कैंसर रोगियों व थैलेसीमिक बच्चों के लिए किए गए उनके महान योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। उनकी आवाज़ में एक ऐसा ठहराव था जो जीवन की सादगी को बयां करता था। उनकी इसी सादगी की मिसाल है 1994 में फिल्म मोहरा का ये मशहूर गीत।

कार्यक्रम एक ही कलाकार में पंकज उदास पर आधारित गीतों को आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से, मेरे यानी आपके रेडियो वाले दोस्त महेंद्र खेरारु के साथ। दोस्तों, एक सीधे साधे इंसान की सादगी भरी मोहब्बत, यही तो खासियत थी पंकज उदास की आवाज़ की। जगजीत सिंह, आशा भोंसले, लता मंगेशकर जैसे दिग्गजों के साथ काम करने वाले पंकज जी बेहद विनम्र और व्यावहारिक स्वभाव के धनी थे। उन्होंने उत्सव, प्रेम प्रतिज्ञा और ये दिल्ली जैसी कई शानदार फिल्मों को अपनी आवाज़ से सजाया। आइए सुनते हैं फिल्म ये दिल्लगी से उनका वो गीत जिसने 90 के दशक के युवाओं के दिलों पर राज किया था।

मैं दीवाना हूँ। वाह क्या बात है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। लेकिन दोस्तों हर खूबसूरत सफ़र का एक अंत भी होता है। 26 फरवरी 2024 को वो मनहूस खबर आई जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। 72 वर्ष की उम्र में मुंबई में पंकज जी ने अंतिम सांस ली। वो लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। भले ही पंकज जी आज शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी मखमली आवाज़, उनकी गज़लें, उनके गाए ये सदाबहार गीत हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस गए हैं। इंसान फानी है लेकिन उसकी कला अमर होती है, इसी फलसफे को दोहराते हुए उनके ही गाए इस बेहतरीन गीत के साथ मैं महेंद्र खेरारो आपसे अनुमति लेता हूँ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज ये कार्यक्रम आधारित था मशहूर पार्श्व गायक पंकज उदास पर। FM 102.9 MHz पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। रात्रि के ठीक 8 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम।
1: माता पिता से दगो करे वो सात जन्म दुख पावेला, जीते जी तो दुख देला मया।
0: श्रोताओं, लोक संगीत के इस कार्यक्रम की पहली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं धनराज सोनी जोधपुरी की आवाज में।

धनराज सोनी की आवाज़ में इस राजस्थानी गीत को अभी हमने सुना और माता पिता की सेवा करने की बात इस गीत में कही गई है। आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और राजस्थानी माटी की महक और हमारी संस्कृति में तो माता पिता का स्थान हमेशा ही भगवान से ऊपर रखा गया है, तो और इसी गीत को, इसी भावना को इस गीत के माध्यम से हमने सुना। लेकिन श्रोताओं, घर को असली घर कौन बनाता है? उस घर आंगन की वो रौनक कौन है जो अपनी एक मीठी सी मुस्कान से पूरे परिवार की दिन भर थकान मिटा देती है? जी हाँ, हमारी बेटियाँ। एक बेटी के बिना कोई भी परिवार, कोई भी घर हमेशा अधूरा है। बेटियों की उसी मासूमियत और परिवार में उनकी अहमियत के इसी मीठे एहसास को आवाज़ दी है कार्यक्रम की अगली रचना ने, और वो आवाज़ है वंदना शर्मा की।

वंदना शर्मा की आवाज़ में इस राजस्थानी गीत को हमने भी सुना। सच में बेटियां ईश्वर का सबसे अनमोल वरदान है, और जहां बेटियां हैं वहां तो साक्षात खुशियां होती ही है। श्रोताओं, आज विश्व परिवार दिवस के इस सफर में हमने लोक संगीत के इस कार्यक्रम में माता पिता के त्याग को समझा और बेटियों के प्यार को भी महसूस किया। परिवार का मतलब ही समर्पण है। जब हम अपनों के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ करते हैं तो वही तो असली भक्ति है।

इसी धर्म और भाव को अपने दिल में और गहराई से उतारते हुए आइए सुनते हैं आज की हमारी इस पेशकश की आखिरी कड़ी यानी कि आखिरी गीत। राम भरोसे जी राधिका की आवाज़ में सुनते हैं ये बेहद ही सुरीला राजस्थानी भजन।

0: लंबे राखे जटा, भाई मारो लंबी राखे जटा। भजन भाव को एक न जाने, भजन भाव को एक न जाने, खावे सीत का रोटा भक्ति कोई नर लाला, भक्ति कोई नर लाला।
1: राम भरोसी राधिका की आवाज में इस राजस्थानी लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। इस वक्त रात के ठीक 8:15 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम।

अनूप जलोटा की आवाज में इस भक्ति रचना को भी आपने सुना। कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। कार्यक्रम की अगली रचना ये आपको सुनवाते हैं अनिल बेरवा के स्वर में।

अनिल बेरवा व साथियों के स्वरों में इस भक्ति रचना के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.9 MHz पर यह आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। आइए सुनते हमारे दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या। समाचार पहले हिंदी में प्रसारित किए जाएंगे, तत्पश्चात रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7

0: रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता

0: आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉकर टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन

0: वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। यह निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewzOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent.

0: बॉबी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प मोड़ शुरू होता है, ललित मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल है।

0: अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित से।

की लाडली और घर में सबसे छोटी सबकी दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस पॉल।

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया।

1989 में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गई।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गई, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय क्षमता

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अभी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

अक्टूबर 1999 में माधुरी दीक्षित अमेरिका के कार्डियोवास्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने के साथ विवाह बंधन में बंध गईं।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: धाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, धाई शाम रोक लई, और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक।
0: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित

खुद अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपेले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नच ले।

2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: इसी साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, जों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आईं। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सफल हो।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 102.9 MHz पर। ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 8:52 पर हमारी आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। जय हिंद।